0: दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे. श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई. चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है. अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की. दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की. दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है. दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे. SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे. श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे. नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा. आज विश्व पर्यावरण दिवस है. पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी. ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है. जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी.

0: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, त्यानंतर इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 वाजता पुणे.
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे. लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ. प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया. रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा. लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया. कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा. और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना

0: पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देश के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी

0: प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

0: उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर, FM रेनबो मुंबई पर। तो भाई आज का दिन है शुक्रवार का, यानी कि अब शुरू होने वाला है वीकेंड धमाल। आज जैसे तैसे ऑफिस में अपना टाइम आप निकाल लेंगे और उसके बाद दो दिन फुल ऑन मस्ती धमाल। तो हमने सोचा आपके इस शुक्रवार को और खूबसूरत कैसे बनाए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे खूबसूरत गीतों के साथ। फिर करेंगे बात मस्त मुंबई में कुछ सितारों की, कुछ उनकी बातों की, कुछ उनकी यादों की। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक खूबसूरत सा गीत।

तो क्या आपने पहचाना इस गीत में कौन थी सिंगर? अगर आपने पहचाना है तो हमें मैसेज कीजिए, क्योंकि आज उन्हीं से जुड़ी कुछ दास्तान, कुछ किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बस अब से कुछ ही देर में फिल्म का नाम भी मैं आपको बता दूँ, या फिर आप चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा दिमागी वर्जिश करने के लिए छोड़ देती हूँ। आज आप मुझे बताएंगे कि जो अभी अभी आपने गाना सुना उसमें कौन सी गायिका की आवाज़ थी। फटाफट से मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यही न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फिलहाल अगर आपने नहीं पहचाना है तो चलिए मैं आपको एक हिंट और देती हूँ कि ये कौन है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो
3: क्या बात है फाइनली आप सबने पहचान ही लिया प्रमोद खरकनिस जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया अवधेश मौर्य जी ने विजेंद्र खटोल जी ने अकोला से पंकज मोहट जी ने फिरोज सिकनपुरिया जी ने इन सब ने और प्रणव शिंदे जी ने इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया जी हाँ ये आवाज़ है उषा उत्तुप जी की उषा उत्तुप जी से ही जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ हम सब जानते हैं एक बेहतरीन सिंगर हैं लेकिन अफसोस की बात ये रही है कि इन्हें इनकी वो जो क्रेडिट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत कई सिंगर्स को मिलते हैं वो इन्हें इंडस्ट्री में इतने सालों में नहीं मिल पाए थे फिर एक वक्त ऐसा आया जब इनसे किसी ने पूछा कि एक्टिंग करोगी तब इन्होंने जो है एक्टिंग का रुख अपनाया एक्टिंग की इन्होंने विशाल भरद्वाज सर के कहने पर और फिर ये हमें नजर आई फिल्म डार्लिंग जी हाँ इस गीत के साथ में जो इन्होंने धमाल मचाया है सात खून माफ इस फिल्म में जहाँ हमें ये इनका प्यारा सा जो कैरेक्टर है और बड़ा ही सीक्रेटिव सा कैरेक्टर है बड़ा ही खूंखार सा कैरेक्टर है जो प्रियंका चोपड़ा के सातों पति को मार देता है वो कैरेक्टर हमें मिला और इसमें एक जो हस्बैंड होते हैं जो इसके सात पतियों में से एक पति होते हैं प्रियंका चोपड़ा जी के इस फिल्म में उन्हें उनमें से एक होता है रशियन तो जब इस फिल्म की कहानी की शूटिंग इन सब चीज़ों की बात चल रही थी तो उषा उत्तुप जी ने विशाल भारद्वाज जी से कहा कि क्योंकि एक पति उसमें रशियन दिखाए गए हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक गाना सुना था जो कहीं कुछ उस गीत से मिलता जुलता था जो उन्होंने इस फिल्म में गाया था तो उन्होंने जब ये सजेस्ट किया तो विशाल जी को ये सुझाव काफ़ी पसंद आया और फिर इसलिए बना ये गीत और इस गीत के लिए इन्हें बाकायदा अवार्ड से नवाजा गया था और तब इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और इन्होंने बताया था कि 42 साल बाद आज इन्हें ये पहला अवार्ड मिला है तो चलिए आइए सुनते हैं उसी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस का ये गाना

0: बिल्कुल, आंखों से आंखें चार हुई, इन पर अवार्ड्स की बौछार हुई और हम सब के दिलों में जो एक वो थी, एक चीज उठती थी कि कितनी अच्छी सिंगर है, लेकिन अब तक वो चीज इन्हें हासिल नहीं हो पाई थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम मिल गया। कमाल की अदाकारा रही, इनकी एक्टिंग भी उस फिल्म में काफी कमाल की थी और गीत तो आई एम श्योर हम सबको इनके बहुत बहुत पसंद है। कुछ ऐसे ही किस्से मैं आपके लिए चुन चुन कर लाई हूँ यहाँ पर, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के उस पार मैं करूंगी आपसे एक और फिल्म की बात, जिसके जो गीत थे उसके हर गीत में कुछ खास बात थी। क्या था, कौन सी फिल्म थी वो बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

बहुत से किस्से हैं जो आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जो आपको सुनाना चाहती हूँ। कुछ फिल्मों के तो ऐसे नायाब किस्से हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। और अक्सर मेरे किस्से जो है वो गीतों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसका हर एक गीत सुपरहिट था। फिल्म में थे शामिल, अगर मैं एक्टर्स का नाम लूँ तो एक्टर्स का नाम लेते ही आप फिल्म पहचान जाएंगे, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना है। तो इसी फिल्म का एक किस्सा आपके लिए लेकर आई हूं, लेकिन उसके पहले

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर हो।

हम भी ऐसे ही आपके लव के लिए सर्च कर लाते हैं कुछ खास जानकारियाँ। तो हाँ बिल्कुल सही, ये फिल्म है धड़कन, जिसका हर एक गीत जो था वो लोगों के दिलों में आज तक बसा हुआ है। गीत चलने की देर है, गुनगुनाने अपने आप लग जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसका वो डायलॉग, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, वो तो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, कॉमेडी शोज में, स्टेज परफॉर्मेंसेस में, फिल्म के गानों में, फिल्म की कॉमेडीज में, कहीं ना कहीं ये डायलॉग इस्तेमाल होता ही रहता है। जी हाँ, ये फिल्म थी धड़कन, काफ़ी पसंद की गई थी ये फिल्म, इसने काफ़ी करियर को उछाल दिया था इन तीनों एक्टर्स के। और फिल्म को अगर पसंद करने की बात की जाए तो लोगों को तो इतनी पसंद थी कि आज तक लोगों की ज़ुबान पर धड़कन धड़कन ये नाम है। तो इसके जितने भी गाने थे, क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि इस फिल्म के हर गाने में इस फिल्म का नाम था? जी हाँ, आप इसके, मैं आज आपको एक गाना सुनवाने वाली हूँ जो अलका जी की आवाज़ में है और साथ में उनके साथी हैं, और इस गाने में भी अगर आप ध्यान से सुने तो वो नाम फिल्म का धड़कन आपको सुनाई देगा। और वैसे ही तुम दिल की धड़कन में हो, या दूल्हे का सहरा सुहाना लगता हो, या फिर हो अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, ये सभी जितने भी गीत हैं दिल ने ये कहा है दिल से, इन सब में इस फिल्म का नाम आता है धड़कन। तो अब मैं आपके लिए ये गाना प्ले करने वाली हूँ, अब आप इस गाने को ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि कौन सी लाइन में आपने इस गीत में फिल्म का नाम धड़कन सुना। बने रहिए हमारे साथ यहीं पर।

0: क्या बात है, आप सबने बड़े ही ध्यान से सुना ये गाना। और विजेंद्र घटोल जी ने हमें लिखकर बताया है कि वो जो लाइन थी, धड़कन मेरी कह रही, बिल्कुल सही, इसी लाइन में धड़कन फिल्म का नाम आता है। प्रमोद खरखनीस जी ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है। अवधेश जी ने कहा कि तीन लाइन में आता है। तनुजा शर्मा जी ने कहा कि वो मुझे बताने ही वाली थी कि धड़कन फिल्म के हर एक गाने में धड़कन शब्द का इस्तेमाल होता है, और इनका जवाब भी सही है, धड़कन मेरी कह रही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने हमें आंसर दिया और जिन लोगों ने इस गीत को इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुना और हमारे इस शो को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मस्त मुंबई में, और आज मैं आपको सुनवा रही हूँ कुछ ऐसे किस्से, कुछ गीतों से जुड़े, कुछ लोगों से जुड़े, जो बहुत खास बन जाते हैं जब वो इतिहास बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त है एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार बातें और गीत दोनों ही होंगे बेशुमार, और अगले घंटे गोरी देरा गांव बड़ा प्यारा में भी कुछ है खास मेरे पास, लेकिन फिलहाल ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बेहद खूबसूरत सा गीत आपको नाचने पर मजबूर कर देने वाला ऐसा ये गीत था। फिल्म आशिक बनाया आपने से अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, जिसे कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और जिसे लिखा था समीर साहब ने। अरे समीर साहब से एक किस्सा याद आया मुझे। समीर साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था इस किस्से के बारे में, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी बताऊँ या फिर एक गीत सुना के फिर बताऊँ? मुझे लगता है मुझे एक गीत आपको सुना देना चाहिए और गीत के उस बार मैं आपको बताऊंगी एक किस्सा जो समीर साहब ने खुद अपने बारे में शेयर किया था। वो एक गीत को सुन के बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। कौन सा था वो गीत, क्या है वो किस्सा, बताऊंगी आपको यहीं पर। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपके लिए ये खूबसूरत सा गीत और गीत के उस पार समीर साहब का वही किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
6: हर

तो किस्सा कुछ यूं है, समीर साहब कहते हैं कि उनका हमेशा का सपना था कि वो जब कुछ लिखे तो लोग जब सड़कों पे गुजरे तो उनके गीत गाते हुए चले, और वो उनके लिए सबसे बड़ा इनाम होता लाइफ का। और एक बार समीर साहब खुद कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने एक गीत सुना, गीत उन्हें बहुत पसंद आया, मुखड़ा उन्होंने सुना, बड़े खुश हो गए वो सुन के। फिर उन्होंने गीत सुना, बड़े खुश हो गए, गुनगुनाने लगे उस गीत को। और जब वो गीत खत्म हुआ तो हमारे जैसे ही जो प्रेजेंटर थे, अनाउंसर थे, उन्होंने बोला कि इसमें संगीत दिया था जतिन ललित जी ने। तो अब जो है, अब उन्हें गीत इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो जो है फ़ोन किए बिना नहीं रह सके जतिन ललित जी की जोड़ी को। उन्होंने ललित जी को फ़ोन किया और पूछा, यार तुम्हारा ना मैंने गाना सुना अभी अभी, और जो

आंसर था, उसने ऐसे ऐसे करके बोला कि ये गाना तुम्हारा है, बताओ जरा ये गाना किसने लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। ललित जी हैरान, हैरान इसलिए क्योंकि ये गीत जो था वो समीर साहब का ही लिखा हुआ था और वो खुद ही भूल गए कि उन्होंने ये गीत लिखा है। तो जिंदगी में ऐसे जो अचंभे हैं, ऐसे जो सरप्राइजेस हैं, वो आते ही रहते हैं और इसलिए वो एकदम से चौंक गए, बोलते ये देखो, मतलब ललित जी को कैसे लगा होगा ना कि इनका, मतलब ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, इन्हीं का लिखा हुआ गीत है और ये मुझसे पूछ रहे हैं, अरे ये बड़ा बढ़िया गीत है भाई, किसने लिखा है। लेकिन अक्सर जिंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है और समीर साहब ने तो इतने सारे गाने लिखे हैं, इतने सारे गाने लिखे हैं कि अगर उसमें से आप कोई भी एक गीत उठा ले तो आप उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को अपने साथ कनेक्ट डेफिनेटली कर पाएंगे। और ऐसे में अगर वो खुद लिखकर भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है भाई, उनके सारे गीत जो है इतने खूबसूरत हैं और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही और खूबसूरत गीत हमें सुनने को मिलते रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो गीत कौन सा है जिस गीत को सुन के वो इस कदर चौंक गए थे और जब उन्हें ये पता चला कि उन्हीं का लिखा हुआ है तो फिर वो अपने ऊपर ही हंसे बिना नहीं रह सके। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए कि आप जानते हैं, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए। एक्चुअली वक्त परमिशन नहीं दे रहा कि हम ये वाला खेल खेलें आपके साथ, तो चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं वही गीत प्ले कर देती हूँ जो उन्होंने लिखा है और जिसे सुनकर उन्हें इतना पसंद आया, इतना खुद को पसंद आया कि वो खुद इस गीत के दीवाने हो गए। आइए सुनवाती हूँ आपको।

तो ये था वो बेहद खूबसूरत गीत जिसे सुनकर समीर साहब खुद चौंक गए थे, और क्यों चौंक गए थे इसका कारण तो मैंने आपको अभी बताया। तो न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, और मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। इस घंटे का यह आखिरी गीत आपके लिए पेश कर रही हूं, अगले घंटे गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा नमस्ते भारत के साथ मैं हो जाऊंगी आपके सामने हाजिर लेकर एक बहुत ही खूबसूरत से गांव के बारे में कुछ खास जानकारियां लेकर। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ठीक 10 बजे होंगे समाचार। अब इतना तो कर लो भाई इंतजार, वाह वाह क्या राइमिंग है, मतलब मजा ही आ गया। तो चलिए ऐसा ही मजा आपको देती हूँ इस गीत के साथ में, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में ये गीत आपके लिए।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो मुंबई, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। वक्त हो चला है समाचारों की सुर्खियों का, आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के दो दो सहित महायुति गठबंधन के 6 उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ हो गया है। शेष 11 सीटों पर चुनाव 18 जून को होंगे और मतगणना 22 जून को शुरू होगी। समाचारों में आगे है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार आज शाम 3 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

बिल्कुल पूरा जग घूम लीजिए। आज मैं जिस गांव के बारे में आपको बताने वाली हूँ ना, उसके जैसा गांव आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हमारे भारत में ऐसा गांव हो सकता है। तो क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है? एक्चुअली वो ऐसी जगह है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ ना, जहाँ बहुत कम लोग जाने का प्लान बनाते हैं। जिस साइड में अक्सर लोगों को अगर बोलो कि कहाँ जाना है तो पहाड़ों में घूमने जाएंगे, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कि उन्हें बहुत सुकून और चैन और आराम मिले, एकदम पीसफुल जगह, या वाइल्ड सफारीज के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो गांव है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम लोग जो है जाते हैं। तो इसी गांव की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यही आज नमस्ते भारत में, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा में, जिसे आप सुन रहे हैं हमारी न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो आपको मैं बताने वाली हूँ उस गांव की कहानी, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक

0: बिल्कुल, आपके ख्वाबों ख्यालों में आपने सोचा नहीं होगा ये ऐसा घर है। जरा सोचिए, आप रात को सो रहे हैं, रात को सोते सोते आपके घर की पोजीशन बदल गई है। हाँ, लोकेशन बदल गई है आपके घर की, आप क्या करेंगे, हैरान रह जाएंगे ना। ऐसी ही एक जगह है भारत में जहां पर धरती पर बने घरों की लोकेशन खुद ब खुद बदलती रहती है। जी हाँ, बड़ा ही अजब गजब है ये नज़ारा और बड़ा ही अजब गजब है ये गांव। तो आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाली हूँ जो है फ्लोटिंग विलेज। आप रात को सोते तो अपने घर में एक लोकेशन पर हैं, लेकिन कई बार जब आप उठते हैं तो आपके घर की लोकेशन ही बदल गई होती है। तो कहाँ है ये फ्लोटिंग विलेज भारत में? आपने विदेशों के बारे में तो बहुत सुना है कि नदी के ऊपर घर है, रेलवे स्टेशन के आसपास मार्केट है जहाँ से बीच से ट्रेन गुजर कर जाती है, फिर वापस सब मार्केट लगा लेते हैं, फूलों की मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट है, सब कुछ सुना होगा। लेकिन अपने भारत के इस फ्लोटिंग विलेज के बारे में क्या आपको पता है? अगर नहीं तो हम हैं ना यहाँ आपको बताने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सब बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के उस पार। तो फिलहाल आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मेरे साथ।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जब आप भी यहाँ जाएंगे तो इस गांव को एक बार के लिए अपने दिल में यूं बसा लेंगे कि फिर आपको कहीं और जाने की हॉलीडेज के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है और ये जगह है हमारे पूर्वोत्तर में, बहुत खूबसूरत सा ये गांव है और तैरते हुए द्वीप है यहाँ पर, बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये जो गांव है ये भी एक झील के ऊपर बसा हुआ है, तो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ गांव और तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बेहद खूबसूरत सा ये गांव है, झील का नाम है लोकटाक। इस झील के ऊपर ये जो गांव बसा है, गांव का नाम है चंपू खंगपोक गांव। तो ये दरअसल प्रसिद्ध लोकटाक झील पर जो बसा है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये मैंने आपको अभी बताया। और ये जो गांव है, झील की सतह पर फुमदी नाम की तैरती हुई जो वनस्पति होती है उस पर बना हुआ है। प्रकृति का एक ऐसा अनोखा कारनामा जो शायद यही देखने के लिए मिलता है। वैसे तो प्रकृति हमें अपने आप से किसी ना किसी तरह आश्चर्यचकित करती ही रहती है, लेकिन जब आप इस गांव में आते हैं और आप इस गांव में एक्सपीरियंस करते हैं, ये फील करते हैं कि कैसे नदी के ऊपर, झील के ऊपर ये पूरा गांव बसा हुआ है खूबसूरती के साथ, तो आप इसके दीवाने हो जाते हैं। ये घर नहीं है, ये पानी पर तैरती दुनिया है। यहाँ किसी का भी घर जो है ठोस जमीन पर नहीं बना है, बल्कि जो तैरते हुए पौधे और मिट्टी के टुकड़े हैं ना, उन पर बना है। और यही कारण है कि इस झील में ये जो घर है, यहाँ वहाँ अपनी जगह जो है बदलते रहते हैं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेलकम बैक न्यूज ऑन एयर ऐप और साथ ही साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ और आपको बता रही हूं चंपू खंगपो गांव के बारे में जो है लोकटक झील पर बसा हुआ हमारे मणिपुर में। वैसे इसके पास में ही है फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी और ये जो है ये इस झील में किबुल लामजाओ नाम की दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नाम थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन अगर आप मणिपुर में जाकर सर्च करें तो आपको अगर पर्यटन स्थल देखने के लिए आप सर्च करें तो आपको ये नाम जरूर उभर कर आएंगे। ये जो झील है लोकटक झील ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 45 से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इससे खास तौर पर देखने के लिए देश और विदेश से भी कई सारे पर्यटक आते हैं और यहाँ पर बोट की सवारी का आनंद लेते हैं। इनफैक्ट जो घर भी यहाँ पर बने हुए हैं वो बोट्स के ऊपर बने हुए हैं लेकिन ये उन हाउस बोट से बिल्कुल अलग है जो आपने केरला में देखी होंगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं इनके ऊपर इनका पूरा जीवन बसता है, इनकी पूरी जिंदगी बसती है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो है अपना लोकेशन जो है बदलते रहते हैं, आज यहाँ कल कहाँ भगवान जाने, लेकिन होते उसी झील के आसपास है। तो जी कितना एक फन एक एडवेंचर लगता होगा लेकिन वहीं कितनी सारी शायद मुसीबतों को साथ भी लेकर आता होगा। सोचिए बारिशों के वक्त ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे। यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरह से इसी झील पर निर्भर है। वो इसी झील में मछली पकड़ते हैं, पीने का पानी लेते हैं और इसे ही बीच बीच में अपनी खेती वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फुमदी वास्तव में घास, जड़े और जो जैविक पदार्थ होते हैं उनसे बनी हुई एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक नेचुरल मैट होती है, एक प्राकृतिक चटाई होती है लेकिन यह इतनी मजबूत होती है कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा घर, यहाँ तक कि आप जानवर मवेशी ये लोग भी आप रख सकते हैं, ये इतनी मजबूत होती है। इसी से जुड़ी कुछ और बातें बताएंगे आपको कुछ ही देर में। फिलहाल वक्त एक खूबसूरत से गीत का।

तो भाई इस गांव के बारे में आपको मैंने बताई कुछ खूबसूरत सी बातें। मुझे ये बताइए कि क्या आप अगला हॉलीडे यहाँ पे प्लान करेंगे? अब क्योंकि ये झील के ऊपर है तो भाई यहाँ पर खेती और मछली पालन है जो इनका प्रमुख व्यवसाय बन जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत से हैं, और अगर आप यहाँ जाएँ तो ऑफकोर्स मैंने आपको कहा यहाँ का नेशनल पार्क ज़रूर देखें, और साथ ही साथ ये जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर के राज्य पशु और दुर्लभ प्रजाति के जो संगाई हिरण होता है उनका इकलौता नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि प्राकृतिक आवास है। तो जो संगाई हिरण है उनका ये नेचुरल हैबिटेट है, तो आप यहाँ पर जब जाएं तो प्लीज जरूर यहाँ पर जाएं और इस जगह को देखें। झील का नाम है लोकटक झील, गांव का नाम मैंने आपको बताया चंपू खंगपोक। वैसे तो जब आप जाएंगे आई एम श्योर आप पूरी रिसर्च करके अच्छे से जाएंगे और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये गाँव कैसा लगा, और वहाँ की कुछ तस्वीरें आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि पानी पर बसी है ये दुनिया और पानी पर बसा है ये अनोखा गांव। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं आपसे कहने की और बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गांव हैं जिनके किस्से मैं आपके लिए लाती रहूंगी। फिलहाल वक्त है खूबसूरत से गीत का, गीत के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।

खूबसूरत से गीतों के साथ आपको मैं नमस्ते भारत में करवा रही थी मणिपुर की सैर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। प्रणव शिंदे जी लिखते हैं, पानी पर तैरती मिट्टी और उस पर है आशियाना, कुदरत का है ये नज़ारा, वाकई बड़ा सुहाना है। शहर की भागदौड़ से दूर लहरों के संग बहता इस फ्लोटिंग विलेज का हर एक जर्रा एक फसाना है। जहाँ धरा भी जहाँ बहती पानी की धार पर, बस्तियाँ बसी हैं यहाँ लहरों के प्यार पर, फुमदी के झूलों में सोया है ये पूरा गाँव, जन्नत बिखरी है देखो लोग तक के इस पार पर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत प्रणव जी, थैंक यू सो मच। और जितनी खूबसूरत आपने कविता लिखी है उतना ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। पंकज मोहर जी, थैंक यू सो मच हमें मैसेज करने के लिए। धनंजय जी, थैंक यू सो मच। शुभलक्ष्मी मस्कर जी, थैंक यू सो मच, हमें खुशी है कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। महेश भाटकर जी, थैंक यू सो मच। विजेंद्र घटोल जी अकोला से, प्रमोद चिंचोलकर जी, बाबा दादर, अंकित जी, इब्राहिम जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, राम प्रजापति जी, तनुजा शर्मा जी, प्रमोद खरखनिस जी, अवधेश मौर्य जी, अरुण सूर्यवंशी जी और मंजुषा चोगली जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह। शुभदा पंचाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ जुड़ी। अंजू जी अंधेरी से, श्रीधर मुराजकर जी, भागेश पाटिल जी, श्रेया राउत जी, थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। और अभी अभी मैसेज आया है सूर्य

काशीनाथ पाटिल जी का। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब चाहूंगी आपसे इजाजत, क्योंकि अगले घंटे 11 बजे से होंगे समाचार और फिर 11:02 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ब्रेक फ्री। तब तक के लिए आपको मैं कुछ बेख्याली में छोड़े जा रही हूँ इस वायदे के साथ कि मेरी और आपकी बहुत जल्द होगी मुलाकात। मुलाकात की तारीख मुकर्रर कर दी गई है 12 जून की। तो रहिएगा मेरे साथ साथ। फिलहाल वैशाली बहुत ज्यादा ही तैयारी के साथ आई है, एकदम प्रिपेयर होकर आपके लिए कुछ खास लेकर। तो वैशाली का इंतजार कीजिए। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 11:17 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता के बीच महंगाई बढ़ने के जोखिम को देखते हुए शुक्रवार को नीतिगत दर रेपो को उम्मीद के मुताबिक 5.25% पर बरकरार रखा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.6% और खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। आरपीआई की रेपो दर को यथावत रखने के फैसले से आवास, वाहन और वाणिज्यिक कर्ज की मासिक किश्त जस की तस बने रहने की संभावना है। मुख्य समाचारों में आगे, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक से अधिक समय में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत को कई महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं, जिनमें हरित आवरण का विस्तार और कई वन्य जीव प्रजातियों की आबादी में वृद्धि शामिल है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों, नीतियों, विज्ञान में विश्वास और नवाचार के माध्यम से पर्यावरण में सुधार लाने का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नागरिकों की सराहना की। आगे समाचारों में, कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने कर्नाटक मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे बेंगलुरु विकास विभाग चाहते थे, लेकिन उन्हें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विभाग सौंप दिया गया। इस्तीफे की घोषणा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा बृहस्पतिवार रात को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किए जाने के बाद आई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्य समाचारों के अंत में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और उन्हें विश्वास है कि अमेरिका तथा भारत के बीच व्यापार समझौता हो जाएगा। दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ताओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि भारत ने वर्षों तक अमेरिकी नीतियों का फायदा उठाया और अमेरिकी कंपनियों पर भारी शुल्क टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कहा उन्होंने हमारी कंपनियों पर बहुत अधिक शुल्क लगाया जबकि हमने उन पर कुछ भी शुल्क नहीं लगाया। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं हमें आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर। जिंदगी में दोस्तों हम सबके चारों तरफ कुछ ना कुछ दायरे होते हैं। कुछ समाज बनाता है, कुछ हालात बना देते हैं और कुछ दायरे हम खुद अपने मन में खींच लेते हैं। दोस्तों मैं कुछ ऐसे सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण फिल्मों के बारे में पढ़ रही थी, तब फिर एक बार टकराई एक ऐसी ही सोच से प्रेरित हिंदी फिल्म से जो बहुत खूबसूरती से दिल को छूती है। ये है फिल्म दायरा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की पहचान किसी तय खांचे, किसी लेबल या किसी सीमा से कहीं बड़ी होती है। हम सब अपने भीतर एक ऐसी दुनिया लेकर चलते हैं जो किसी एक दायरे में समा ही नहीं सकती, इसलिए हमारे खुद के बनाए हुए दायरों से ब्रेक फ्री करना ही एक रास्ता बचता है। इस सोच, इस विषय पर और बातें करेंगे आज ब्रेक फ्री में। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी 107.1 FM रेनबो पर।

107.1 FM रेनबो सुन रहे हैं आप और ब्रेक फ्री में एक कहानी नहीं बता रही आज, लेकिन आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि दायरे कितने किस्म के होते हैं और एक ऐसी फिल्म जो हमें सोचने पर प्रेरित करता है कि इन दायरों से हमें अपने आप को किस कदर निकालना है। रास्ता जो है वो हम ही को तो खोजना है। दोस्तों, अक्सर हम अपने सपनों के आसपास भी एक घेरा खींच लेते हैं। सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई, अब मौका नहीं है, अब मैं वैसा नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन सच तो ये है कि कई बार सबसे मजबूत ताले बाहर नहीं, हमारे मन के दरवाजों पर लगे होते हैं। फिल्म दायरा की कहानी एक ऐसी युवती के इर्द गिर्द घूमती है जो हिंसा और अत्याचार का शिकार हुई है और भागते हुए एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो लोक कलाकार है और स्त्री वेश धारण करके परफॉर्मेंसेस करता है। समाज दोनों को अलग अलग कारणों से स्वीकार नहीं करता। दोनों अपने अपने संघर्षों और इनसिक्योरिटीज के साथ सफर पर साथ निकलते हैं। इतनी अलग सी कहानी है ये कि कहते हुए भी कुछ बातें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म ने बहुत अवार्ड और बहुत नाम कमाया, नेशनल फिल्म अवार्ड भी कमाया और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इसने हासिल किया, यानी फेस्टिवल द वैलेंसिया, यहां पर भी बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड इसने जीते, ग्रैंड प्री अवार्ड भी जीता इस फिल्म ने। इतनी गजब की फिल्म और ऐसी कहानी आज

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
4: हर घर

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर और बातें कर रही हूँ मैं एक फिल्म की जो नेशनल अवार्ड विनर रहा और इसने नेशनल अवार्ड सिर्फ जीता नहीं, इसने एक छाप छोड़ दी दिलों पर लोगों के। इसमें जो है किरदार हमने देखे निभाए सोनाली कुलकर्णी और निर्मल पांडे इन्होंने, और फिल्म थी दायरा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मैं पढ़ रही थी कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जिन्होंने समाज पर बहुत ही गहरा छाप छोड़ा है। और जब इस फिल्म की बात करते हैं तब हमें याद आता है कि कितने सारे दायरों में हमने अपने आप को घेर रखा है। दोस्तों, फिल्म का एक बेहद मार्मिक पहलू ये है कि रास्ते पर दोनों ही पात्र उन पहचान पत्रों यानी आइडेंटिटीज और सामाजिक खांचों से जूझते रहते हैं जिन्हें दुनिया उनके ऊपर थोपना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे में इंसान को देखना सीख जाते हैं, किसी लेबल को नहीं। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, एक सीन विशेष रूप से दिल को छू जाता है। सफर के दौरान दोनों पात्र लगातार डर, इनसिक्योरिटी, समाज और कठोर निगाहों का सामना करते हैं, लेकिन जब उनके बीच भरोसा जन्म लेने लगता है तब दर्शक महसूस करता है कि इंसान को सबसे ज्यादा आजादी तब मिलती है जब वो अपने डर के दायरे से बाहर निकलकर किसी पर विश्वास करना सीखता है। डर एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, वो ऐसे दायरे में हमें बांध देती है, कैद कर लेती है, जहां पर किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी विश्वास फिर से करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और कोशिश की जरूरत पड़ती है। चलिए तो फिर एक और खूबसूरत गाने की तरफ रुख करते हैं जो गाना बस इसी तरह का कुछ एहसास दिलाता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया लेकिन मेरे विश्वास को तुमने घात पहुंचाया।

0: जब सजते हैं सुरीले सांस तो खिल जाती है मन की कली,
1: यही डूबे दिल मेरे।
0: जगमगाता है ये दिल का शहर और धड़कनों की धुन पर थिरकते हैं अनजाने ख्वाब कई।
1: हाले दिल को सुकून चाहिए।
0: चल पड़ा है कारवां इन साजू का इस कदर, निखरने लगे हैं जिंदगी के रंग कई।
1: रंग दे तुम्हें गेरुआ।
0: आओ रूबरू हो जाए हम इस हसीन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM रिंगबो पर, दिल से दिल तक।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है। मैं हूँ वैशाली और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं कई सारे दायरों को तोड़ने की, उनसे ब्रेक फ्री होने की। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हर साल आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक विशेष मेहमान और ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है उनसे बातचीत का 12:05 से। हमारे खास मेहमान बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं हमारे पर्यावरण के बारे में, उसको सुरक्षित रखने के बारे में और किस तरह हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारे भारत सरकार ने क्या कुछ किया है हमारे इस पर्यावरण के सुरक्षा के लिए। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी। ये 12:05 से 107.1 FM रेनबो पर म्यूजिक कैफे में मेरे साथ होंगे। दोस्तों फिल्म दायरे के बारे में आप सभी से बात कर रही थी। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म तो है ही है ये, लेकिन साथ ही साथ अविश्वास, इनसिक्योरिटी जो हमारे दिल में पैदा होती है लोगों को लेकर, जो हम विश्वास नहीं कर पाते कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी ठोकरें खाने के बाद, इन सारी चीज़ों को इतनी खूबसूरती से ये फिल्म दिखाती है कि बस आज मैंने मन बना लिया कि आप सभी से दायरों को तोड़ने के बारे में बात करूँगी। दोस्तों ये फिल्म जो है ना, इसका एक और प्रभावशाली पक्ष ये है कि ये बार बार हमें दिखाती है कि समाज अक्सर लोगों को तयशुदा सांचे में फिट करना चाहता है, जो सांचे से अलग हो उसे स्वीकार करना कठिन हो जाता है समाज को। लेकिन कहानी के पात्र अपने अस्तित्व के साथ समझौता करने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करते हैं, यही उनका विद्रोह है और यही उनकी मुक्ति भी। दोस्तों हम में अक्सर जो है, ज्यादातर लोग हम में से शायद ऐसी असाधारण परिस्थितियों से ना गुजरे हों, लेकिन अपने अपने छोटे दायरों से तो रोज सामना होता ही है ना। मैं नहीं कर सकता ये, बस मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है, ये ऐसे वाक्य जो है ना, इनमें कैद हम रहते हैं। दोस्तों दायरा की कहानी हमें ये नहीं कहती कि दुनिया एक दिन में बदल जाएगी, ये तो हो नहीं सकता। वो कहानी बस इतना कहती है कि परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। जिस दिन हम अपने बारे में बनी सीमित धारणाओं को चुनौती देते हैं, उसी दिन पहला दायरा टूटता है। दोस्तों और बातें आपसे जाते जाते बिल्कुल करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और खूबसूरत गाने आप सभी के लिए। ये दुनिया अगर हम आंखें खोलकर देखें तो इतनी रंगीन है कि बस बिल्कुल ऐसा लगता है कि उस एक दुपट्टे या पल्लू में समेट गई है और सिमट गई है। और अगर यूं हमें कोई साथीदार मिले, कोई हमसफर मिले, तो मीलों भी चला जा सकता है। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों 107.1 FM रेनबो पर ब्रेक फ्री चल रहा था जो बस खत्म होने को है। नदी जब निकलती है तो उसे पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर भी वो बहती है। पक्षी को उड़ान भरते समय पूरा आसमान नजर नहीं आता, फिर भी वो पंख फैलाता है। शायद जीवन भी ऐसा ही है, हमें फर्स्ट स्टेप उठाने की हिम्मत चाहिए, पूरी मंजिल का नक्शा नहीं। दायरे हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वो हमारे भीतर भी होते हैं, और जब मन उन दायरों को पार करना सीख लेता है तब रास्ते नहीं बदलते, पूरी दुनिया बदल जाती है। अभी आप सुनेंगे ठीक 12 बजे हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद जो मैंने कहा था हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो।

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर 107.1 MHz पर सुन रहे हैं FM रेनबो आकाशवाणी मुंबई से। और अब वक्त हो चुका है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों की सराहना की। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। मुख्य समाचारों में आगे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। मुख्य समाचारों के अंत में, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हरिहरन अमसा करुणन और MR अर्जुन की पुरुष युगल जोड़ी ने आरोन ताई और किंग खाई शिंग की मलेशिया की बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को हराकर उलटफेर करते हुए पहली बार किसी BWF विश्व टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हरिहरन और अर्जुन ने राउंड ऑफ 16 मैच में पहला गेम गंवाने के बाद 16-21, 21-15, 21-19 से जीत दर्ज की। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। कार्यक्रम म्यूजिक कैफे के लिए और हमारे विशेष बातचीत के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हमारे अपने हित के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, और आज पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें करने हमसे जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, प्रोफेसर डॉक्टर श्री मिलिंद कुलकर्णी जी, जो हैं डायरेक्टर प्रकृति एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। उन्हें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल है। आपका हार्दिक स्वागत है 107.1 एफएम रेनबो पर, मिलिंद कुलकर्णी जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद,
0: बहुत अच्छा लगा
1: के लिए।
0: जी, आज आप हमसे जुड़े हैं क्योंकि जब मैंने आपका सारा अनुभव जो है वर्क एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आप जैसे एक्सपर्ट्स ही हैं जो पर्यावरण के बारे में बहुत ही सही और सटीक जानकारी हमें दे सकते हैं।
1: धन्यवाद
0: जी। दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि मिलिंद जी क्वालिफिकेशन से बीई सिविल, एमई सिविल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी भी की है। तो सर, इतने सारे आपके सुंदर क्वालिफिकेशंस है, बढ़िया है, तो हमें बताइए सर कि आपके अनुभव में भी ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसका महत्व क्या है और भारत इसके प्रति किस प्रकार प्रतिबद्ध है।
1: हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो

0: यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा संचालित किया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में एक परिषद भरी थी, जिसके बाद इसको विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
1: अच्छा,
0: अभी अभी इसका महत्व इसके लिए है क्योंकि इस दिन विश्व स्तर पर पर्यावरण विषयक मुद्दे जैसे प्रदूषण, वातावरणीय बदल, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनके बारे में लोगों में जागरूकता की जाती है। इसके अवसर पर लोगों को वेस्ट रिडक्शन, पानी की बचत, इकोसिस्टम का बचाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोक प्रतिनिधियों को भी उनका ध्यान सशक्त पर्यावरण रक्षण कानून बनाने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व है और भारत का इसके बहुत पूर्ण योगदान है क्योंकि 1972 के बाद लगातार भारत विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है
1: जी।
0: और बहुत बार तो भारत ने उसकी यजमानता भी की है, जैसे कि 2011 में एक थीम थी जंगल, नेचर एट योर सर्विस। 2018 में एक थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो जिसकी यजमानता भारत ने की थी। 2023-24 में एक नेशनल कैंपेन सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर रखा था, उसका भी यजमानत्व भारत के पास था। इसके अलावा आपको मालूम ही है
1: जी,
0: नरेंद्र मोदी जी का फेमस स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन
1: जी,
0: उसके अलावा ट्री प्लांटेशन, तो इसके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस में भारत के महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी जी, तो इस वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है क्लाइमेट एक्शन, तो मैं आपसे कुछ इसके बारे में जानना चाहती हूँ और आम श्रोताओं के लिए कृपया आप सरल शब्दों में बताइए हमें कि क्लाइमेट एक्शन का वास्तव में अर्थ क्या है।
0: यस, क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज, इसमें लोगों की कभी कभी गफलत होती है। तो क्लाइमेट चेंज या वातावरणीय बदल की वजह है, वातावरणीय बदल का जो मुख्य स्रोत है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिसको बोलते हैं, और जो पेरिस एकॉर्ड हो गया था 2014 में, तो उसमें क्लाइमेट एक्शन के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए थे। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि औद्योगिकरण के पहले जो तापमान था उससे हम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ये बढ़त 1.5 डिग्री से भी नीचे हो। तो इसके लिए क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। तो इस क्लाइमेट एक्शन में क्या होना चाहिए, तो हरित वायुओं का उत्सर्जन कम करना चाहिए, वातावरणीय हरित वायु जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, वातावरणीय बदलों से जो समस्याएं आजकल उत्पन्न हो रही है, जैसे आप वर्तमान पत्रों में पढ़ रही है, महापूर हो रहे हैं, अकाल आ रहे हैं, कनाडा जैसे देश में भी हीट वेव आ रही है, तो उसके लिए देशों की सक्षमता हमको बढ़ानी है। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर है, विंड है, बायोगैस है, उसका हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी।
0: इसके अलावा ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, जिसके लिए देश स्तर पर और वैयक्तिक स्तर पर एक्शन लेना चाहिए, बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये सब हमको क्लाइमेट एक्शन के अंदर आता है।
1: वाह, बहुत ही अच्छे से आपने बिल्कुल खूबसूरती से बताया कि क्या क्या चीजें क्लाइमेट एक्शन में आती है और क्या क्या करना चाहिए। देखिए सर, अक्सर लोग मौसम और जलवायु परिवर्तन को एक ही समझ लेते हैं कि मौसम और जलवायु परिवर्तन दो अलग है और अंतर है, तो हमें बताइए ये अंतर क्या है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत में कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए हैं हमारे देश ने।
0: जी हाँ, तो मौसम परिवर्तन और जलवायु उत्सर्जन, इनका रिश्ता कॉज और इफेक्ट जैसा है। जैसे कि जलवायु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनका उत्सर्जन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे हम फॉसिल फ्यूल की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वातावरण बदल उसकी वजह से हो रहा है। तो ये रिलेशन है जलवायु उत्सर्जन और वातावरण बदल का, तो जिससे कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव्स प्रखर हो रही है, इसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जैसे कि ग्लेशियर जो है हिमालयाज में वो मेल्ट हो रही है, समुद्र की जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं कि मुंबई जैसी सिटी कुछ कुछ सालों में पानी के नीचे आ जाएगी।
1: ओहो, हाँ।

0: रेनफॉल पैटर्न में भी बदल हो रहे हैं। पहले 7-8 जून को मानसून आता था, अभी 15 जून, कभी कभी 1 जुलाई तक पड़ता है। फसल पर भी विपरीत परिणाम हो रहा है। तो ये सब चीजें को हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। अभी आपका जो दूसरा प्रश्न है, भारत कौन कौन से प्रमुख कदम उठा रहे हैं, तो उसके लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया है।
1: अच्छा।
0: और सोलर पैनल जो हम 2014 में हमारी जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी कुछ चंद गीगावाट की थी, जो आज बढ़कर 100+ गीगावाट हो चुकी है।
1: वाह।
0: और ऊर्जा बचत के लिए संसद ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पारित किया है।
1: अच्छा।
0: जिससे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको हम BEE बोलते हैं, इसकी स्थापना हो गई है। और वो इंडस्ट्रीज को, लोगों को मार्गदर्शन करती है कि हम ऊर्जा की खपत कैसे कम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और केंद्र और राज्य स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग भी स्थापित किए गए हैं। और पेरिस एकॉर्ड पर भी भारत ने अपना कमिटमेंट जाहिर किया है।
1: जी जी।
0: जैसे कि कुछ देश, अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री भी पेरिस एकॉर्ड से बाहर हो गए हैं।
1: अच्छा।
0: इसके विपरीत भारत जैसा जो देश है उसने उसकी सहमति दी है पेरिस एकॉर्ड को।
1: वाह। जी जी, ये बहुत ही अच्छी आपने महत्वपूर्ण बातें बताई। और आपने जल की बात की अभी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि जल संरक्षण के लिए भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफी कुछ बदल रहा है, मौसम बदल गया है, बारिश देर से होती है और पर्याप्त नहीं होती कहीं कहीं, तो जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान का पर्यावरणीय महत्व क्या है, ये भी हमें बताइए। तो इन टोटालिटी मेरा मतलब है कि जल संरक्षण से जुड़ी हुई बातें कुछ हमें बताइए।
0: हाँ जरूर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की
1: जी।
0: क्योंकि अगर हम पानी की बात करते हैं तो भारत के पास पानी के खाली 4% सोर्स उपलब्ध है। और भारत का पॉपुलेशन विश्व के 18% लोग भारत में रहते हैं। तो भारत एक वाटर स्ट्रेस नेशन में गिना जाता है। तो इसके लिए हमारे शासन ने बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है, जिससे जल जीवन मिशन, तो उसका ये उद्दिष्ट था कि हर घर, उसका एक वाक्य था कि हर घर नल, नल से जल। मतलब अभी हम मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में तो हमारे घर में नल से पानी आता था
1: जी।
0: लेकिन मोदी जी का ये सपना था कि हर गांव के भी हर घर में लोगों को नल से पानी मिलना चाहिए
1: जी।
0: और वो उद्दिष्ट पूर्ण करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण योजना इम्प्लीमेंट की गई है। दूसरी इसमें अटल जल है कि जो ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं था अभी तक, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का स्तर है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो उसको संरक्षित करने के लिए अटल जल नामक एक योजना है। दूसरी नमामि गंगे करके एक योजना है, जिससे गंगा नदी और बाकी की जो नदियां है भारत की उनको क्लीन करने की योजनाएं है। उसके बाद अमृत जिस योजना से शहरों का जो सिटी का जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर पॉल्यूशन, इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। और जल शक्ति मिशन की जो बात कर रहे हैं आप, तो इट इज एन अम्ब्रेला एफर्ट। सो ऑल जो मिशंस है भारत सरकार शासन के
1: जी जी,
0: वो टुगेदर एक अम्ब्रेला जिसकी बोलते हैं वो है जल शक्ति मिशन।
1: अच्छा।
0: जिसमें वाटर कंजर्वेशन, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर पॉल्यूशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये सभी ये जल शक्ति मिशन के अंडर आते हैं।
1: अच्छा, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी हमें। और हमारे श्रोताओं को आपकी वजह से पता चल रहा है कि जल को संरक्षित करने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है हमारे भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पर सर आपका एक पसंदीदा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ और एक छोटा सा ब्रेक लेकर के हम फिर लौटेंगे। और मैंने देखा आपकी चॉइस सारी ही बहुत ही बेहतरीन, उम्दा आपकी चॉइस है पुराने गानों की, ब्लैक एंड व्हाइट ईरा की। तो आप पसंद करते हैं सर संगीत?
0: धन्यवाद। यस, बहुत ही।
1: तो आपके लिए और हमारे श्रोताओं के लिए मैं प्ले करने वाली हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर से हम जुड़ेंगे, यानी कि प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी जी से बातें जारी रहेंगी इस विश्व पर्यावरण दिवस पर। आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो।

0: के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, और खास करके हमारे भारत सरकार की क्या पहले हैं और कितना फर्क पड़ता है पर्यावरण के जो अलग अलग पहलू हैं इसे संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, इस पर ये रोशनी डाल रहे हैं। आपका फिर एक बार स्वागत है सर।
1: धन्यवाद वैशाली जी।
0: जी सर, आगे बढ़ते हुए अभी जो हमने जल की वगैरह तो बातें कर ली और हम सभी क्या कर सकते हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है ये हमने जान लिया, अब हमें ये भी बताइए कि भारत की मिशन लाइफ पहल आज काफी चर्चा में है, तो हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज जरा बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है।
1: जी हाँ, तो मिशन लाइफ, इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट।
0: जी,
1: और इसको लॉन्च किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने
0: जी
1: 2021 में एट COP26 जो ग्लासगो में है स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। और इसका प्रमुख उद्दिष्ट है माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन।
0: अच्छा,
1: तो हमारे पास जो रिसोर्सेस या संसाधन है उनका हम बहुत ही काळजीपूर्वक इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये इसका मेन उद्दिष्ट है। और इसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है किसके लिए, तो आप ऊर्जा की बचत कीजिए
0: जी,
1: और उसका कंजर्वेशन कीजिए, पानी की बचत कीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, बाइसिकल्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आप स्विट्जरलैंड में बड़े कंपनीज के सीईओ भी अपने ऑफिस में बाइसिकल से जाते हैं, तो इसी तरह हम लोगों को भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके जो पेट्रोल डीजल की तरफ से यूज करने से गाड़ियों का हम ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो बहुत ही ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, प्रदूषण होता है, जिसका हमारे आरोग्य पर विपरीत परिणाम होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, रिसाइकल करो, रिसाइकल और रीयूज करो प्रोडक्ट्स को, क्लोथ एंड सस्टेनेबल फूड को हम इस्तेमाल करना चाहिए
0: जी जी,
1: और पेड़ों को लगाना चाहिए। ये सब चीजें लाइफ के अंडर आती है, जिसमें इंडिविजुअल है, इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट है। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं, तो हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं
0: जी।
1: इंडस्ट्रीज को क्या करना है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स उनको मैन्युफैक्चर करनी है, उत्पादन करना है। और शासन क्या कर सकता है कि पॉलिसीज ऐसी बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचे।
0: क्या बात है, तीनों चीजें साथ मिलकर इस मिशन के अंतर्गत आती हैं।
1: एग्जैक्टली
0: जी जी, नहीं बहुत बढ़िया। और हमें बताइए सर के भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य का क्या महत्व है, क्योंकि नेट जीरो उत्सर्जन हम पढ़ते रहते सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए आम भाषा में बताइए क्या होता है।
1: जैसे हम अभी बात कर रहे हैं 15-20 मिनट से कि जो ग्रीन हाउस गैस जिसको हम जलवायु बोलते हैं उसका उत्सर्जन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक पण किया है। क्या पण किया है कि हमारा जो उत्सर्जन है वो पूरा घटेगा 2070 में, यानी कि जितने हम ग्रीन हाउस गैसेस या जलवायु का उत्सर्जन करते हैं उतना ही उनको हम अंदर लेंगे, उतना ही उसको हम निकाल देंगे हमारे पर्यावरण से।
0: अच्छा।
1: तो भारत में इसको नेट जीरो बोलते हैं, और भारत ने पण किया है कि 2070 में भारत एक नेट जीरो कंट्री बनेगा।
0: वाह वाह,
1: तो ये उद्दिष्ट हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, पेरिस में, पेरिस एग्रीमेंट जिसको हम COP26 बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, वहाँ ये हमारा उद्दिष्ट हमने डिक्लेयर किया है। तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं कि रिड्यूस इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन, उससे क्या फायदे होंगे कि भारत का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में वो बहुत ही कम हो जाएगा। भारत की एक आबादी जो है अभी विश्व का प्रथम नंबर का देश है, तो पर कैपिटा हमारा उत्सर्जन कम है, लेकिन अगर पूरा देश हम कंपेयर करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। और अगर हम 2070 में नेट जीरो हो जाते हैं तो एक विश्व वातावरण बदल के लिए एक बहुत बड़ी एक्शन हो जाएगी।
0: जी जी, और ये कितना मुमकिन है, यानी कि होता है ना कि टारगेट एक आइडियल टारगेट होता है जो सेट होता है, लेकिन वहां तक यानी समय पर चीजें कर पाना ये बड़ी चुनौती होती है।
1: सही कहा आपने, तो इसके लिए विल पावर जिसको पॉलिटिकल विल बोलते हैं ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी नेशनल गवर्नमेंट जो मोदी जी के अंडर काम कर रहा है, उन्होंने हर

0: सेक्टर को भी टारगेट दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल जैसी एक बड़ी पब्लिक सेक्टर जो फॉर्चून 500 कंपनी है, तो उनको तो हम उनको उनका तो टारगेट है कि 2034 में ही हम नेट जीरो बनेंगे।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे हर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है कि नेशन मतलब क्या, नेशन मतलब नेशन के कारखाने, नेशन की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, तो ये सब सबको टारगेट दिए हैं बहुत पहले नेट जीरो होने के लिए। तो अगर इस पर बारीकी से पॉलिटिकल विल होगी तो ये जरूर मुमकिन हो सकता है।
1: वाह, क्या बात है।
0: जैसे हमने बोला कि नेचुरल सोलर अभी 100 गीगावाट के ऊपर हम लोग सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये उसी दिशा में एक कदम है।
1: वाह बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्लानिंग है और बहुत पहले से ही, क्योंकि टारगेट दिया गया है जल्दी का, तो ये काम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2070 तक हो जाए। अब हमें सर ये भी बताइए कि ग्रीन इंडिया मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, और फिर हम आएंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर।
0: जरूर जरूर वैशाली जी,
1: जी,
0: तो जैसे कि शब्द बोलता है ग्रीन, ग्रीन शब्द सुनते ही हमारे सामने आता है कि घना जंगल, बराबर है
1: जी।
0: तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को बढ़ाना, और जो फॉरेस्ट अभी डिफॉरेस्टेशन हो गया है अर्बनाइजेशन की वजह से, तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको हमको वापस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ाना है। और इसके तहत हमने, आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में अभी चीतों की संख्या बढ़ रही है।
1: हाँ जी,
0: आज के न्यूज़पेपर में आया है कि बंगाल टाइगर रत्नागिरी एरिया में पाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें नेचर के लिए हो रही है बिकॉज ऑफ द फोकस जो है गवर्नमेंट का अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, जैसे हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, कोयला जलाते हैं ऊर्जा के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ग्लोबल वार्मिंग होता है
1: जी।
0: उसके विपरीत अगर जंगल हम बढ़ा देंगे तो जंगल के जो पेड़ है वो कार्बन को खींचते हैं
1: जी
0: फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होने में असरदार होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, जैसे सॉइल इरोजन है, जैसे फॉरेस्ट बढ़ते हैं वैसे सॉइल इरोजन कम हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग स्पेसीज होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी की। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत तालाब है उसमें से प्रदूषण की वजह से मछली वगैरह सब मर रही है, जैसे मैं खुद बांद्रा तालाब में निगड़ित हूँ रिजुविनेशन में, तो वहाँ हम बायोडाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो ये सब आता है ग्रीन इंडिया मिशन में।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर हम आपसे फिर जुड़ेंगे एक क्विक कमर्शियल ब्रेक के बाद, और एक गाना सुनवा देंगे आपकी पसंद का हमारे सारे श्रोताओं को। आपका धन्यवाद, और बस कुछ मिनटों में हम फिर से आपके साथ होंगे।
0: जरूर जरूर।
1: आप सभी सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, और अभी आप सभी के लिए जो गाना प्ले होने वाला है वो बस कुछ ही देर में होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी बातें हो रही हैं, तो आपको बने भी रहना है, कहीं नहीं जाना है। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना,
5: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
4: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
5: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना, कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते।

0: जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। और अभी म्यूजिक कैफे ये शो का नाम है, पर बातचीत हम कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। और हमारे साथ कुछ ही देर बाद फिर से जुड़ेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखते हैं। और अभी आप सभी के लिए उनके पसंद का एक गाना हम प्ले कर रहे हैं। आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो।

0: 107.1 FM रेनबो पर आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस और इस खास दिन के उपलक्ष में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बने हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी। फिर से आपका स्वागत है सर।
1: धन्यवाद वैशाली
0: जी। और हमारी बातें आगे ले जाते हुए मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में तो बातें हुई ही, उसके बारे में हमें बिल्कुल बताइए, उसके खतरों के बारे में और ये किस तरह का प्रदूषण करवाता है, फैलाता है। लेकिन साथ ही साथ मैं सबसे पहले बात करूंगी कचरा प्रबंधन की, रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत की क्या रणनीति है, इस पर भी कुछ रोशनी डालिए सर।
1: जरूर वैशाली। तो आपको पता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो पहला भाषण किया था 15 अगस्त का, तो उसने उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था और 2016 में वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ गए। तो ये रूल्स के तहत सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर ये कंपलसरी किया गया। इसका मतलब है अगर आप मुंबई में किसी फ्लैट में रहती होगी तो आपके घर से रोज 2 या 3 डस्टबिन बाहर आना चाहिए।
0: हाँ।
1: तो एक एक डस्टबिन जो नीले कलर का है उसमें खाली ड्राई कचरा होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक है, बॉटल है या वेट, अब खाने की जो चीजें है जैसे केला का छिलका है उसको बोलते हैं वेट वेस्ट। तो ये सेग्रीगेट होके बाहर निकलना चाहिए। और हजार डस्टबिन जैसे कि सैनिटरी नैपकिन है, टूटी हुई कांच है, इसको हजार डस्टबिन बोलते हैं। तो सेग्रीगेशन एक्ट सोर से मैंडेटरी किया गया
0: जी।
1: और फिर जो सूखा कचरा है उसका रिसाइकलिंग करना ये भी मैंडेटरी किया गया, जैसे प्लास्टिक से वापस प्लास्टिक बनना चाहिए, पेपर प्लास्टिक से वापस प्लास्टिक बनना चाहिए। तो ये ड्राई वेस्ट रिसाइकलिंग किया गया। इसके अलावा ई वेस्ट रिसाइकलिंग, जो ई वेस्ट में जैसे हमारा मोबाइल है उसमें बहुत सारे रेयर अर्थ होते हैं, तो अगर इसका हम सिस्टमेटिक रिसाइकलिंग करेंगे तो देश का बहुत बड़ा जो इम्पोर्ट करने में फॉरेन एक्सचेंज जाता है वो बचता है। और वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एज फार एज द मेटल्स आर कंसर्न्ड, तो इसके लिए रिसाइकलिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट किया गया। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वेट वेस्ट जो है उसका आप कंपोस्टिंग कीजिए, उसका खत बनाइए और उसको जमीन को वापस आप सशक्त बनाइए। तो कंपोस्टिंग ऑफ वेट वेस्ट ये भी पॉलिसी में ये किया गया है। और बल्क जनरेटर जो है, जैसे मुंबई में हमारे कुछ सोसाइटीज रहती है 200 फ्लैट्स है, 400 फ्लैट्स है, तो बीएमसी बोलता है कि हम आपका कचरा नहीं उठाएंगे, आपको आपके कचरे का खुद मैनेजमेंट करना है, आपके कंपाउंड के अंदर ही आपको ड्राई वेस्ट का रिसाइकलिंग करना है, वेट वेस्ट का कंपोस्टिंग करना है। तो उससे क्या हो गया, जो देवनार कांजूर मार्ग को रोज 9000 टन कचरा जा रहा था वो भी 6000 टन तक कम हो गया है।
0: अरे वाह, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है जी।
1: और वेस्ट टू एनर्जी, जो प्लास्टिक है पिंपरी चिंचवड़ में प्लास्टिक वेस्ट से एनर्जी बनने का कारखाना किया गया है, तो वो भी एक वेस्ट टू एनर्जी, ये भी एक अच्छा तरीका है। या प्लास्टिक से आप कर सकते हो, या जो वेट वेस्ट है उससे बायोगैस पैदा कीजिए, बायोगैस को आप कॉम्प्रेस बायोगैस बनाइए और उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की समस्या आपको मालूम ही है अभी युद्ध की वजह से जो हो रहा है, और वैसे भी हमारे नेचुरल सोर्सेस हमारे पास बहुत ही कम है। तो वेस्ट टू एनर्जी ये भी एक तरीका है। और जो पुरानी जो लीगसी वेस्ट है, जैसे हम हर शहर में जाते हैं तो कचरे का बहुत बड़ा लीगसी वेस्ट जिसको बोलते हैं, हजारों एकड़ जमीन अभी कचरे से भरी हुई है, जैसे देवनार है मुंबई में, कांजूर मार्ग है या पुणे में है पिरंगूर जैसे फुरसुंगी जैसा एरिया, तो इसको हम बायो माइनिंग करके उसको हम वापस ये लैंड हम रिक्लेम करने वाले हैं। तो ये
0: अच्छा।
1: हमारी पॉलिसी कचरा प्रबंधन के बारे में है।
0: वाह वाह। और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताइए कि पर्यावरण को कितना खतरा है, क्योंकि आजकल बातें भी बहुत हो रही है लेकिन कहीं कहीं लोग पालन करते हैं, कहीं नहीं करते, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: जरूर जरूर वैशाली। तो क्या है, सिंगल प्लास्टिक जो है, जैसे हम कोई अनाज खाते हैं और अनाज को हम फेंकते हैं तो वो सड़ जाता है और वो पर्यावरण में मिल जाता है, घुल मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक का वैसा नहीं है। प्लास्टिक आप इस्तेमाल करके आप फेंकोगे तो वो सैकड़ों साल ऐसे ही पर्यावरण में रहता है और वो पर्यावरण में मिलता नहीं, जिसकी वजह से सभी जगह आप देखोगे कि कचरे का प्लास्टिक का डिग हो गया है। जो नदियां है, मीठी नदी है या दहिसर नदी है मुंबई की, बहुत सारी नदियां ये प्लास्टिक से भर चुकी है, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है या एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाता है. तो ये एक मिनेस है, इसके लिए अभी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किया जाता है. लेकिन लोग इसमें जो सहयोग मिलना चाहिए, जैसे हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो अगर कोई सब्जी वाला बोलता है कि भाई प्लास्टिक के थैली में ले लो सब्जी, तो हमको इनकार करना चाहिए
0: जी.
1: हम खुद थैली लेके जाना चाहिए कपड़े की, और वही थैली हम बार बार इस्तेमाल करना चाहिए. इससे क्या होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा. तो इसके वजह, इसके लिए पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने ऐसी की है, तो एक तो बैन किया है जो लो थिकनेस वाला प्लास्टिक है उसको, और दूसरा अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून बनाया है. मतलब जो प्लास्टिक बनाता है उसको ही, या थर्माकोल बनाता है उसको खुद को मार्केट से थर्माकोल उठाना है. जैसे कोई थर्माकोल बनाने वाली कंपनी है तो वो उसको बीएमसी के साथ टाइप करके जहाँ जहाँ लोग थर्माकोल फेंकते हैं वहां से उठा के उसको वापस थर्माकोल में कन्वर्ट करना है, जिसको हम रिसाइकलिंग बोलते हैं. सेम चीज प्लास्टिक के बारे में. तो इसकी वजह से जो प्लास्टिक की मात्रा है पर्यावरण में वो बहुत ही कम हो जाएगा रिसाइकलिंग की वजह से.
0: हाँ हाँ. अब इतना सारा हम रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल लिविंग की भी बात सामने आती है साथ ही साथ, तो सस्टेनेबल फूड सिस्टम क्या है, जिसे टिकाऊ खाद्य प्रणाली भी कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए.
1: तो ये जो सस्टेनेबल फूड है, मतलब ये फूड ऐसा होना चाहिए कि वो हेल्दी होना चाहिए और उसका पर्यावरण पर भी विपरीत परिणाम होना नहीं चाहिए.
0: अच्छा.
1: जैसे हम अभी देख रहे हैं कि लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उससे टेम्पररी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स है उसकी वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर होता है, लोगों को कैंसर जैसे विकार भी होते हैं, या जो सॉइल की, जो जमीन की जो सुपीकता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. तो इसकी, इसके लिए जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम डेवलप करना ये गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो गया है. तो उसमें से लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए एंड वो इकोनॉमिकली भी वायबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड जैसे बोलते हैं हम लोग, कि आप केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल न करके उसको आप वैसे प्रोडक्ट निकालिए, तो उसकी टेस्ट भी अलग होती है और वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है.
0: जी.
1: जैसे कि मैंगोज जो है, अभी लोग पिकाने के लिए उसको जल्दी ये करने के लिए तरह तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप नेचुरली अंबा अगर मैच्योर होता है तो उसकी टेस्ट अलग ही होती है. तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल फूड, रीजनरेटिव फार्मिंग.
0: जी.
1: जो नेचुरल हर्बिसाइड्स है उनका इस्तेमाल कीजिए इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स
0: जो पुराने जमाने में यूज होता था या ऐसा कुछ.
1: जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो ये हर्ब्स है जो हमारे जो देहाती एरिया है उसमें बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो है वो बीमारी भी दूर करते हैं प्लांट्स की, और एट द सेम टाइम उसका जमीन पर बुरा असर भी नहीं होता है.
0: जी.
1: तो ये सब चीजें आते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग, जिसमें सस्टेनेबल फिशिंग है, फूड वेस्ट भी आप कम कीजिए.
0: हाँ.
1: प्लांट बेस्ड फूड यूज कीजिए. सो दैट ऑल ये सब आता है सस्टेनेबल फूड सिस्टम में.
0: जी जी. तो सर मैं अभी आपसे दरखास्त करूंगी कि एक क्विक हम लोग सॉन्ग ब्रेक लेते हैं और फिर से जुड़ते हैं 2-3 मिनटों में. हमारे श्रोताओं से बहुत ही दिलचस्प बातें आप बता रहे हैं, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वाकई बहुत दिल लग रहा है इसमें जानकारी में. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. फिर से जुड़ते हैं एक सॉन्ग ब्रेक के बाद. आप सभी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि बने रहे, जुड़े रहे 107.1 FM रेनबो पर. अभी आप सभी के लिए एक और गाना, प्रोफेसर श्री मिलन कुलकर्णी जी की फरमाइश आप सभी के नाम.

0: आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी जी। सर, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, इतना आप धैर्य से सारे हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं।
1: थैंक यू, जरूर
0: जी। तो आगे बातें मैं करना चाहती हूँ अभी के आने वाले समय की। यानी देखिए, कहते हैं कि फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का है, तो इनको बढ़ावा देने से पर्यावरण को क्या लाभ होंगे और कितना डुएबल है? अभी हम काफी सारे ईवीज देखते हैं हमारे आसपास, लेकिन ये अफोर्डेबल इनका होना भी जरूरी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर।
1: जरूर जरूर वैशाली जी, एक बार हम थे तब सोलर एनर्जी को भी लोग बोलते थे, अरे ये तो R&D प्रोडक्ट है,
0: अच्छा
1: ऐसा कभी होगा क्या सोलर एनर्जी का? लेकिन आज हम देख रहे हैं लगभग हर रूफ के ऊपर अब सोलर पैनल्स हम लोगों को देख रहे हैं। तो वैसा ही इलेक्ट्रिक वाहनों का होने वाला है कि अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के जो इस्तेमाल है, इट इज मल्टीपर्पज। फॉर एग्जांपल, इससे एक तो ऊर्जा की बचत होती है। पेट्रोल और डीजल हम खाली मुश्किल से 10% हमारे भारत में निर्माण होता है, बाकी सब हमको गल्फ कंट्रीज, रशिया, वेनेजुएला पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे ऊर्जा के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों के, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बढ़ रहा है, पहले जो चार्जिंग का जो समस्या थी वो भी बढ़ रही है। तो अगर हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, दूसरा जो पार्टिकुलेट मैटर है, अभी जैसे आप देखती होगी कि दिल्ली जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है, एयर क्वालिटी ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी
0: है। सच में जी जी।
1: तो एयर क्वालिटी, अगर पार्टिकुलेट मैटर हम PM10 का जो लिमिट है, तो WHO का लिमिट है 45 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। हमने इंडिया में उसको रिलैक्स करके 100 तक किया है, और ये 100 का भी जो मात्रा है वो 100 से ज्यादा 200, 300, 400 तक जा रही है। तो इसकी एक प्रमुख वजह है कि जो फ्यूल हम यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये है। अगर हम पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाते हैं तो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में भी बहुत बड़ा पर्यावरण का लाभ हो सकता है
0: जी।
1: और जिसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है अपने सेहत पर होगा।
0: हाँ जी।
1: जैसे कि हम यूरोप अमेरिका में जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी होती है।
0: जी जी।
1: हमारे यहाँ आते ही हमको एयर क्वालिटी की वजह से मेनी साइड इफेक्ट, सो ऑल ये सब चीजें में बहुत ही काफी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इन चीजों में बहुत ही सुधार आएगा जब इलेक्ट्रिक वाहन हम जब इस्तेमाल करने को बढ़ावा देंगे।
0: और आगे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हमारे वातावरण की और एयर क्वालिटी की, तो देखिए भारत में वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि वृक्षों की वजह से हमारा एयर प्योरीफाई होता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइएगा।
1: जरूर जरूर वैशाली जी, आपको मालूम है महाराष्ट्र से बोल रहे हैं
0: जी।
1: तो महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हो चुके हैं।
0: हाँ जी।
1: और जो संत का जो उनका जो काव्य है वो है, उसमें एक काव्य था वृक्षवल्ली अमा सोयरी। तो पुराने जमाने में ये जब समस्या नहीं थी तब भी हमारे संतों ने वृक्षों के महत्व को जान लिया था, और अभी इतने सालों बाद वापस हम लोग अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके लिए शासन ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें से एक है कि ग्रीन इंडिया मिशन।
0: हाँ।
1: जिससे कि जो फॉरेस्ट का कवर है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें ट्री प्लांटेशन है।
0: हाँ।
1: या जहाँ डिग्रेड हो चुके हैं फॉरेस्ट, वो डिग्रेड हुए जो जंगल है उनको वापस कैसे लाना है। तो जैसे हमने कुछ देर पहले बात की, जैसे रत्नागिरी जैसा एरिया है, सह्याद्री का जैसा एरिया है, वहाँ जो टाइगर लुप्त हो चुके थे वाघ, वो वापस आने लगे हैं, वो इस वजह से आने लगे हैं। फिर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम फॉर डिग्रेडेशन फॉरेस्ट, कैंपा नगर वन योजना, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, वन महोत्सव, मैनग्रोव जिसको हम खारफुटी के जंगल बोलते हैं, उसके लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च किया है, और जिससे कि जिसके हमें सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इतना जानकर खुशी हो रही है कि कुछ प्रोग्रेस है, क्योंकि अंततः इंसान देखता है कि कोशिशें बहुत सारी है लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, और हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये सच में खुशी की बात है। सर, आगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हमें बताइए कि इस संरक्षण के पूरे प्रोसेस में स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों की क्या भूमिका है, तो दोनों बातों पर कुछ रोशनी डालिए।
1: जरूर जरूर वैशाली। तो युवा हो, विद्यार्थी, ये आपके जो जिसको बोलते हैं फ्यूचर लीडर्स है, दे आर आवर फ्यूचर सिटीजन। तो जो एक्चुअली जो पर्यावरण के बारे में गांधी जी ने जैसे बोला था कि देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर आवर नीड्स बट नॉट फॉर ग्रीड, और ऐसा भी बोला जाए कि ये जो अर्थ है, दिस इज वी आर ट्रस्टीज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ द अर्थ। तो ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर वो सिटीजन्स जो युवा है और विद्यार्थियों को, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और सिटीजन साइंस को भी आजकल महत्व दिया जा रहा है। जैसे कि पानी के जो स्रोत है, जैसे बांद्रा में जो तालाब है या बहुत सारे पानी के जो तालाब है, उनका क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है। तो इसकी वजह है कि लोगों की जो हैबिट्स है, लोग कचरा डालते हैं या बहुत सारी चीजें उसमें डालते हैं। तो अगर शासन के पास जो स्टाफ है या मशीनरी है, उस पर लिमिटेशंस है, और जब तक नागरिक युवाओं इस पूरे प्रयास में नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक ये पर्यावरण को जो इम्प्रूवमेंट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होगा। इसके लिए उनको एक्टिव पार्ट लेने चाहिए, उनको अलग अलग अपने जो प्रोजेक्ट्स है, दे शुड टेक द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दे शुड गाइड द सिटीजन। सपोज उनको दिख रहा है कि ये उल्लंघन हो रहा है, तो दे शुड टेक एक्टिव पार्ट इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। तो इसमें विद्यार्थियों की भूमिका, युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: जी जी, और मैं जानना चाहती हूँ सर आपसे कि एक तो आप स्वयं सेवी जो संगठनाएं हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं, और साथ ही साथ हमारे इन पर्यावरणीय प्रयासों को, हमारे देश के, हमारे सरकार के इन प्रयासों को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से देखा जा रहा है, इस पर भी कुछ डालिए रोशनी।
1: यस जरूर जरूर। तो सिटीजन के जो आप एनजीओज बोल रहे हैं कि
0: जी, हाँ,
1: एनजीओज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मैं खुद एक एनजीओ का प्रमुख हूँ, प्रकृति एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो ये लोग रिसर्च करते हैं और जो डाटा है पर्यावरण के बारे में वो पॉलिसी मेकर्स के सामने लाते हैं, और जिसका महत्वपूर्ण एक

0: कॉन्फिडेंस होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए पर्यावरण संरक्षण के जो कानून है वो लागू करने के लिए। तो ये साइंटिफिक और रिसर्च के फील्ड में एनजीओ का योगदान है, जिसमें अभी अनुसंधान फाउंडेशन है वो भी ऐसे प्रयत्नों को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी एक चिपको जैसी एक आपको मालूम होगा, चिपको जैसी एक संस्था थी उत्तराखंड में, तो वो जो वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो वो वृक्षों को चिपक जाते थे।
1: जी जी,
0: उसकी वजह से क्या हो गया कि जो पेड़ों को काटना है वो बहुत कम हो गया और पर्यावरण संरक्षण हो गया।
1: जी,
0: जैसे केरला में एक साइलेंट वैली करके बहुत बड़ा डैम होने वाला था, तो वहाँ भी स्थानिक लोगों ने उसका विरोध किया और वहाँ माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पंतप्रधान थी, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया कि उसको पता चला कि जो बायोडाइवर्सिटी है जो बहुत ही स्पेसिस जो मूल्यवान स्पेसिस वो नष्ट हो जाएगी हमेशा के लिए, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट रद्द किया। तो इसके लिए ये स्थानिक लोगों की जो भूमिका है, एनजीओ की भूमिका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो हमको विकास और पर्यावरण दोनों का भी ध्यान रखना है,
1: दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और इसे विश्व किस तरह देख रहा है ये भी बताइएगा।
0: विश्व की तरफ अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जो इंडस्ट्री में बहुत ही प्रगत हो चुका है, नंबर वन इकोनॉमी है, वो अभी बोल रहा है कि हम मानते ही नहीं है पेरिस अकॉर्ड को। वो पेरिस अकॉर्ड बल्कि उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। इसके अगेंस्ट भारत ने जो गरीब देश है तुलना में पेरिस अकॉर्ड पर सहमति जताई है और हमारा सोलर मिशन के अंदर हम 100 गीगावाट तक उसको लेके गए।
1: जी जी,
0: तो विश्व स्तर पर इसकी बहुत ही तारीफ हो रही है कि जिस तेजी से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहे हैं, जिस तेजी से हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अपना रहे हैं, तो विश्व में इसकी बहुत ही प्रशंसा हो रही है।
1: जी जी, नहीं बहुत अच्छा लगा ये सारा कुछ जान के, क्योंकि प्रयास है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, यही काबिले तारीफ है, तो वो हमें प्रेरित करता है और ज्यादा अच्छा करने के लिए। तो सर, जाते जाते मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही कम समय है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर नागरिकों को क्या संकल्प लेना चाहिए और हमारे देश की क्या प्राथमिकताएं होंगी आने वाले सालों में।
0: जो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि वैशाली जी, कि पहले नागरिकों को हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि हमारे घर में जो कचरा जाता है उसको हम सेग्रीगेट करके ही बाहर रखें, आप कहाँ भी कचरा मत कीजिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम जब ऊर्जा यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, तो उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत हो। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए, अननेसेसरीली ऊर्जा की जो एक्सपेंडिचर है, फ्यूल यूज है, वो कम करना चाहिए। और अवेयरनेस भी, इतर अन्य लोगों का भी हमको अवेयरनेस करना चाहिए, जिससे एनवायरमेंट का, पर्यावरण का संरक्षण हो सके और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या हम अच्छी तरह से सामना कर सके।
1: जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमसे जुड़े यहाँ पर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर, और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे स्कीम्स और अलग अलग योजनाओं के बारे में आपने इतना विस्तार से चर्चा किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका।
0: मैं भी धन्यवाद देता हूँ एफ एम रेनबो 107.1 को कि मुझे बुलाया और मेरी पक्ष रखने का मौका दिया, धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और इस दिन की खास शुभकामनाएं आपके जैसे एक्सपर्ट्स की, हमारे समाज को, हम सभी को बहुत बहुत जरूरत है, धन्यवाद। और आपको आगे के अपने हर काम के लिए शुभकामनाएं, पर्यावरण से जुड़ी हुई आप एक से बढ़कर एक बेहतर चीजें सामने लाते रहें, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ बने हुए थे प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी, विश्व पर्यावरण दिवस पर वो बातें कर रहे थे, और अभी आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या बातमीपत्रात मी राजेंद्र दळेकर आपलं स्वागत करतो। भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे। मुंबईत झालेल्या बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली। रेपो दर 5.25% कायम राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। त्याचवेळी आर्थिक वृद्धी दराचा अंदाज 6.9% घटून

न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आपकी फरमाइश है, आपकी बातें 107.1 एफएम रेनबो पर वैशाली के साथ हिट एंड हॉट में। मेरी बात हुई पंकज मोहन जी से और हिट एंड हॉट में इन्होंने अपनी फरमाइश तो भेजी ही है, साथ ही साथ कई सारी बातें इन्होंने कही। ये जो है शो भी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी बातें इन्होंने साझा की। ये खुद भी जो है किसानी करते हैं और इन्हें अभी अभी जो हमने पर्यावरण के ऊपर कार्यक्रम किया यानी इंटरव्यू हुआ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर श्री मिलिंद कुलकर्णी का, तो ये इन्होंने बहुत इंजॉय किया, उनको अच्छा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण बातें रही और जो सस्टेनेबल फूड के बारे में भी बातें हुई ये खास जो है इन्हें पसंद आई। इन्होंने लिखा है कि पानी की बचत, ईंधन की बचत, ग्लोबल वार्मिंग, इस सब पर बहुत बढ़िया जानकारी मिली और कहते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है इस पर भी जानने को मिला और हर घर जल योजना के बारे में भी जानकारी जो मिली इससे अच्छा लगा और कचरे का निर्मूलन, इससे किस तरह स्वच्छ भारत मिशन, कचरा रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जा रही है ये सब जानकर भी अच्छा लगा। और कहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और बहुत सारे जो विषय थे और ऐसे विषय थे जिनके बारे में कच्ची पक्की जानकारी थी तो वो सारा जो पता चला उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और कहते हैं जागरूकता के लिए सभी के जो एफएम रेनबो ये कार्यक्रम करता है वो उन्हें बहुत पसंद है। धन्यवाद आपका पंकज जी। और हमें मैसेज आया है अशोक पाटिल जी का और राकेश माथुर जी का, ये अपनी फरमाइशें भेजते हैं। वैदेही बाबा दादर से आदर्श कनोजिया, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर तंगसली गोवा से, ये सभी बने हुए हैं। और यहाँ पर मुझे मैसेज आया है प्रदीप अनंत कृष्णन जी का भी, जो मुझे एक न्यूज़पेपर कटिंग भेजते हैं एड की, अर्थ में अनर्थ ना होने दो। वाह क्या बात है। और शुक्रिया, धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। फिरोजगन पोरिया भी हमें लिख भेजते हैं कि उन्हें दायरा फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी और ये जो है सुनना चाहते हैं रंबा हो। उषा उत्तुप जी का आज जन्मदिन है तो उसे सेलिब्रेट करते हुए ये सुनना चाहते हैं उनके आवाज़ में कोई भी गाना। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी श्रोताओं के मैसेजेस बहुत जल्द हम पढ़ेंगे, फिलहाल आपके लिए ये गाने हम प्ले कर रहे हैं जो है कुछ तो लोग कहेंगे। ये है इनकी फरमाइश जो हमारे लिसनर्स अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और हमारे तमाम श्रोता जो हमें न्यूज ऑन AIR ऐप FM पर सुन रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे कई सारे श्रोता महाराष्ट्र के बाहर से भी है और हमारे शहर और महाराष्ट्र प्रदेश के तो हैं ही हैं। अब आप सभी के मैसेजेस में से जो अभी अभी मैंने देखा है मैसेज, प्रकाश शिंदे जी का आया है और बहुत ही खूबसूरत बातें इन्होंने लिखी हैं। पेड़ पौधे हैं धरा का गहना, इनके बिना मुश्किल है रहना। आओ मिलकर कसम ये खाएं, इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं। हवा में घुला है जो जहर, उसे काम करना है। इस सूखी पड़ती धरती में फिर से रंग भरना है। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन पेड़ लगाना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर कल बनाना है। वाह क्या बात है। लिखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद आपका। और लिखते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का असली आधार है और इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और इन्होंने जो है इंटरव्यू को बहुत इंजॉय किया, लिखा भी कि इतनी सारी जानकारी मिली और इतना सारा अच्छा लगा कि कुछ हो रहा है हमारे आसपास। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम सुनते रहते हैं लेकिन पता नहीं होता कि काम क्या चल रहा है। तो ये जो इंटरव्यू पर पर्यावरण विषयक महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद लिखा है। आपका भी धन्यवाद कि आपने धैर्य से सुना और इसको अपने अंदर जो है आने दिया, इन बातों को, ये बातें आपके अंदर समाई हैं और पहले से भी समाती है, ये जानकर हमें भी खुशी हुई। तो ये सुनना चाहते हैं, बैठा नीली झील किनारे, फिल्म कुर्बान का गाना ये इनके लिए प्ले होगा। और भी गाने हैं जैसे फिरोज सिगनपुरिया, इन्होंने रंबा हो की फरमाइश की थी, तेरी और इस गाने की फरमाइश राकेश माथुर ने की थी, वो भी प्ले करेंगे। अजय साखरे जी की भी फरमाइश है, वो भी हम प्ले करने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप सभी बने रहे। विजेंद्र घाटोल जी ने भी फरमाइश की थी जो हमने प्ले कर दिया है। और यहाँ पर मेरी बात हुई संजय दर्शन जी से, बहुत ही खूबसूरत बातें इन्होंने साझा की। इन्होंने कहा कि देखो दायरे का तो ऐसा है ना कि दायरे से बाहर निकलना भी ज़रूरी है लेकिन दायरे के अंदर रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते अगर दायरा नहीं रहेगा तो फिर लोग जो है कुछ भी करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो केओस हो जाएगा। तो ये रही बातें संजय दर्शन जी से, बहुत ही डीप बातें, गहरी बातें इन्होंने साझा की। अब दोस्तों एक गाना प्ले हो पाएगा अब सभी के लिए, मैं प्ले कर रही हूं तेरी ओर। फिर 1:30 से 1:40 तक आप सुन सकेंगे न्यूज स्टूडियो से मराठी में समाचार, और 1:40 के बाद हिट एंड हॉट जारी रहेगा 107.1 FM।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाला आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। हिट एंड हॉट जारी है और हमारे श्रोता जिनके गाने में प्ले करने वाली थी वो गाने अभी प्ले होंगे, तो बने रहे अपने गानों के लिए और फिर अगर गुंजाइश होगी ये इन तीन गानों के बाद तो और गाने भी प्ले करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कि शायद एक और गाना प्ले होगा, उससे ज़्यादा गाने नहीं प्ले हो पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास यहाँ इस घंटे वक्त की कमी होती है और आप सभी के प्यार की वजह से इतने सारे मैसेज

हिट एंड हॉट चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर और आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मैसेज आया है यहाँ पर राजेंद्र परमार जी का, जो लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा उन्हें पर्यावरण पर डॉक्टर कुलकर्णी ने बताई हुई जो बातें थी, और लिखते हैं धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जो है मैं मैसेज देख रही हूँ, नितिन स्वामी इनका है जिन्होंने पहले से हमें मैसेज कर रखा था, तो ये लिखते हैं कि आज एक फ्री में अच्छा सब्जेक्ट रहा और बिल्कुल इन्होंने दायरा फिल्म देखी है। सोनाली कुलकर्णी एकदम अच्छी फेवरेट अभिनेत्री है इनकी। लिखते हैं कहानी कुछ अलग है लेकिन बहुत अच्छी है, तो ये बात लिखी है। और इन्होंने अपने गाने की फरमाइश भी भेजी है जो कोशिश होगी कि प्ले हो। और हमें मैसेज कई सारे और श्रोताओं का भी आया है।

यहां पर संदीप कुमार जी, अनिल कांबड़े हिंगोली से, चेतन कुमार गया बिहार से, राजेंद्र जुठानी जी कांदीवली वेस्ट से, मुकेश कश्यप जी जो करते हैं हमें मैसेज अपने सह परिवार, और अभिजीत गवाणकर जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, दिग्दर्शन और कविता जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, सुशील यादव और रेणु यादव, स्वप्निल अमरावती से, ये सारे हमें मैसेज करते हैं, और हितेंद्र दास जी का भी मैसेज हमें यहाँ आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ ही और गाने प्ले हो पाएंगे जिनमें से अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं, नैनो में सपना, बैठा नील झील किनारे उससे पहले, और फिर अगर गुंजाइश होगी तो पहली पहली बार मोहब्बत की है। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव

और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकर

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुखविंदर सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे रब ने बना दी जोड़ी से वाला गाना। 5:06 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम और आज के शो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, यानी कि एनवायरमेंट के बारे में, क्योंकि आज है 5 जून। आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और धीरे धीरे हौले हौले जो गर्मी बढ़ती जा रही है हर साल, उसके बारे में आपसे चर्चा होगी, आपके साथ कुछ बातें होंगी, आपकी राय ली जाएगी, आपको राय दी जाएगी, और इसीलिए आपको बने रहना इसी रेडियो स्टेशन पर। क्योंकि शो की शुरुआत अभी हुई है, हम बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। बेनी दयाल की आवाज में है गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी 2 स्टेट्स। एंड आपके लिए जो बाकी के गाने हैं वो भी क्यू कर रही हूँ धीरे धीरे। ये जो टॉपिक है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे मैंने कहा, इसीलिए कहीं नहीं जाना है आपको, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

उषा थुप एंड रेखा भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे थे सात खून माफी ये वाला गाना। 5:16 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। और जहां पर आंखें चार से चार हो रही है, वहीं पर दो पेड़ की जगह चार पेड़ लगाए, क्योंकि ऐसी हालत हो गई है हमारे शहर की, हमारी देश की, हमारी दुनिया की, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है ये ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये तो हमने भी देखा है, अभी तो धीरे धीरे बारिश शुरू हो रही है, पर जो गर्मी के महीने थे ये आई एम श्योर सबके लिए बहुत ही टॉर्चरस रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए तो थे, आई एम श्योर आपके लिए भी रहे होंगे। और आपके एनवायरनमेंट को लेकर क्या राय है, आपको क्या लगता है कि हम कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बच सकते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। छोटे से एकदम वन लाइनर टू लाइनर रिस्पॉन्सेज आप भेजें, पूरा का पूरा ऐसे मत लिखिए, क्योंकि जब तक पढ़ते हैं तब तक गाना खत्म हो जाता है और फिर समझ नहीं आता कि आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 8657661071 है हमारा नंबर। और जैसे मैंने कहा, आपकी क्या राय है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हम अपने ही तरह से छोटे से वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज को, ये जानना है मुझे आपसे। नंबर है हमारा 8657661071। एंड अभी के लिए जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूं मैं, दिस इज श्रेया घोषाल मोहित चौहान की आवाज में, आरक्षण मूवी से गाना। और इसके बाद एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक होगा, उसके बाद फिर एक गाना सुनिए और फिर आती हूं मैं ऑन एयर आपसे आपकी ही राय ऑन एयर बताने। कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे एक्शन रिप्ले से गाना। 5:27 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम और हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। आपके कुछ राय कि जो पर्यावरण है उसे सुधारा कैसे जाए, बिकॉज ये कोई और नहीं कर सकता, ये हमें ही करना होगा। एंड अपने ही छोटे से तरीके में भी अगर हम कर ले तो भी बहुत बड़ी चीज है। एंड श्रेय राउत का हमें मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक पर बंदी करनी पड़ेगी कम्प्लीटली, जो कि कुछ हद तक सही भी है क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बड़ा मुश्किल है, या 100 साल लग जाते हैं और कभी कभी प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, तो जो हमारी धरती है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक है। हाँ, अगर उसे रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, पर जैसे वो कह रहे हैं प्लास्टिक पर बंदी, आई अग्री टू इट कम्प्लीटली। प्रणव शिंदे का मैसेज आया है हमें, कह रहे हैं कि प्रकृति हमारी सबसे अनमोल धरोहर है, स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरे भरे पेड़ ही जीवन का आधार है, पर जल बचाने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ करने में योगदान कैसे दे, ये मैंने पूछा है। पेड़ लगाना है, यस आई एम, पर ये भी बहुत एकदम जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, पेड़ लगाते तो हैं पर क्या आपने या हमने आज के दिन ऐसा कुछ किया है, और अगर किया है तो आई वॉन्ट टू नो दैट ऑल्सो। आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि आज आपने ऐसा क्या किया है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ी सी भी इन सम वे हेल्प कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे बेहतर बनाने में। 8657661071 है हमारा नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। एंड जब तक आप मुझे बताते हैं, आपके लिए बैक टू बैक दो गाने आ रहे हैं। उदित नारायण सुनिधि चौहान की आवाज़ में है ये गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी अग्निपथ। एंड इसके बाद आप सुनेंगे अदनान सामी की आवाज में, और अगेन उनके साथ सुनिधि चौहान ही है, फ्रॉम द मूवी ऐतराज एक गाना। कहीं नहीं जाना है आपको, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

अदान सामी सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे ऐतरा से गाना एंड इट इज 5:38 बाय द स्टूडियो क्लॉक। आप ट्यून है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर, शो चल रहा है लव यू जिंदगी। एंड आपसे पूछा है कि आज के दिन आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपने एनवायरनमेंट के भलाई के लिए थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हमें करनी चाहिए जिससे जो पर्यावरण है उसका थोड़ा सा भला हो जाए। एंड इन अ शॉर्ट वे एक दो लाइन में आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैसेज आया है अगेन पंकज का, कह रहे हैं कि यस प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह घर से थैली लेकर बाजार में वो जाते हैं, दुकानदार से प्लास्टिक की थैली की डिमांड नहीं करते हैं एंड जो प्लास्टिक का उपयोग है वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। एंड सिर्फ प्लास्टिक की थैली नहीं, इनफैक्ट जो क्लॉथ बैग होता है आप वो लेकर जा सकते हैं, एक हमेशा आपके साथ रखें, आपके बैग में हो सकता है या फिर आपकी गाड़ी में रख सकते हैं या फिर अगर आप टू व्हीलर लेके जाते हैं उसमें रख सकते हैं। जो टू व्हीलर और जो फोर व्हीलर

है उसका इस्तेमाल भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अगर ना करें तो वो भी हेल्प करता है. जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं वो भी आप कम कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंडिविजुअली अगर करें तो हेल्प कर सकता है हमारे क्लाइमेट को, हमारे एनवायरनमेंट को. एंड यही आपसे पूछ रही हूं मैं. तो आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करते हैं या फिर आप क्या सलाह दे सकते हैं जिससे हम सब इसे अपनाएं एंड हेल्प करें खुद को ही एंड हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को. 8657661071 है हमारा नंबर. और वक्त हो गया है अगले स्पॉट ब्रेक का. इसके बाद सुनने वाले हैं आप फिर दो बैक टू बैक गाने. और इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.

5:51 हो रहे हैं, आप ट्यून इन ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। आतिफ असलम, ज्योतिका टांगरी की आवाज में आप सुन रहे थे लैला मजनू से वाला गाना। एंड आपसे मैंने पूछा था कि आप किस वे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्यावरण को, सो दैट हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा सा और वक्त रहे और एवरीथिंग इज ओके, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। एंड ये सारी चीजें जो हम डेली तौर पर करते हैं वो तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई फील जो इको सिस्टम है पूरी दुनिया का, यानी कि सिर्फ ह्यूमंस नहीं, जहाँ पर जानवर भी हैं, जहाँ पर पक्षी भी हैं, पंछी भी हैं, उन्हें भी कोएग्जिस्ट करने का हमें इक्वल मौका मिलना देना चाहिए, क्योंकि उनका भी राइट है इस दुनिया में जीने का। और ये जो आजकल बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सा हो गया है विद रिगार्ड्स टू कम्युनिटी एनिमल्स, विद रिगार्ड्स टू कबूतर के रहने की जगह, और हम हमेशा डिमांड करते हैं कि नहीं, इन्हें एरिया से निकाल देना चाहिए, इन्हें सोसाइटी से बाहर कर देना चाहिए। आई थिंक अगर हम ये चीज़ें करनी बंद कर दें तो काफ़ी वे में एनवायरनमेंट को मदद मिलेगी, बिकॉज ये नेचुरली एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अनलाइक हम ह्यूमंस जो कि कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, चाहे वो डस्टबिन्स में ही क्यों ना हो, बट ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो इम्प्योरिटीज़ को है, जो कचरे को है, कूड़े को है, वो ह्यूमंस करते हैं। एंड एनिमल्स और जो पक्षी होते हैं वो इन अ वे एनवायरनमेंट की मदद करते हैं। तो जहाँ पर हम बोलते हैं कि इन्हें निकाल देना चाहिए, इन्हें रहने नहीं देना चाहिए, इन्हें शेल्टर्स में भेज देना चाहिए, ये काफ़ी गलत कर रहे हैं। और अगर हम ये ब्रॉड करें हमारी सोच को, तो आई थिंक काफ़ी मदद मिलेगी हमको। बेसिक चीज़ें ही हैं, आपसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डिमांड करती है ये सारी चीज़ें, बट अगर ये आप अगर फॉलो करें तो देन आई एम श्योर ये आपको काफ़ी मदद करेगा एंड हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी काफ़ी मदद करेगा। फिलहाल तो जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूँ, आयश किंग की आवाज़ में है, नकाश अजीज की आवाज़ में है, नमित त्रिवेदी है, दिस इज आयशा का टाइटल ट्रैक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

में थे गाना, दिस वॉज यूफोरियाज एल्बम गली, और 6:24 हो गए हैं। आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है अंदाजे बयां, और आज अंदाजे बयां में हम प्ले करने वाले हैं इंडी पॉप गाने, यानी कि जो 90s और 2000s के जो एल्बम के गाने थे जो कि नॉन मूवीज से हैं, नॉन मूवी कैटेगरी से हैं, हम वो गाने प्ले करेंगे।

है सुखविंदर सिंह ने, एंड ये भी उनके एल्बम का ही ट्रैक है. और इसके बाद एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक आएगा, एंड आफ्टर दैट एक गाना आप और सुनेंगे, और उसके बाद मैं आऊँगी फिर से ऑन एयर आपसे बातें करने अबाउट दी इंडी पॉप एरा. और इसीलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

चलो बस्कर ने बोला है तो छोटा सा बस्कर हमने कर दिया है। अदनान सामिया अमिताभ बच्चन की आवाज में आप सुन रहे थे ये वाला गाना फ्रॉम द एल्बम कभी नहीं। और अदनान सामी के बहुत सारे इनफैक्ट इंडी पॉप म्यूजिक वीडियोस में आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा होगा, रानी मुखर्जी, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, और अगर मैं किसी और को भी मिस कर रही हूँ तो आप वो भी बता सकते हैं। फिलहाल तो रवीना टंडन का भी एक वीडियो था विद अदनान सामी एंड वो काफी साईफाई वीडियो सा बनाया था दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेम्बर। पर क्योंकि अदनान सामी की बात कर रहे हैं हम तो जो ओरिजिनल गाना है जिनसे उन्होंने फेम पाया इन द इंडी पॉप एरा और इन द इंडियन सर्किट वो गाना प्ले करने वाली हूं मैं। इसमें थे उनके साथ गोविंदा। और अगर आपको आपकी पसंद का कोई गाना सुनना है जो कि इंडी पॉप एरा से हो या फिर जो नॉन मूवी जॉनर से हो तो वो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन 8657661071। ये बस इसी आवर के लिए जो हिट एंड हॉट वाला आर है वो तो हम प्रॉपर इंडियन मूवीज हिंदी मूवीज वाले गाने ही प्ले करने वाले, पर फिलहाल ये जो अगला गाना है ये आ रहा है आपकी ओर। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

दलेर मेहंदी की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गाना एंड 90s के इंडी पॉप गाने हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम लविंग इट कि आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है. वक्त बहुत कम है पर फटाफट जो दो या तीन बैक टू बैक गाने मैं प्ले कर पाऊंगी वो करने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट सॉन्ग है अलीशा चिनॉय की आवाज में बट ऑब्वियसली मेड इन इंडिया ये जो गाना है एंड इस गाने की रिक्वेस्ट की हमें नागेश ने. ही हैज मैसेज जस्ट फ्रॉम पोलैंड. और इसके बाद सोनू निगम की आवाज में भी आप एक गाना सुनेंगे. वेरी ऑब्वियस गाना है आई एम श्योर पर आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना इसी रेडियो स्टेशन पर. एंड अगर आपको ये शो मजा आया है तो जो अगले हफ्ते में फिर ऑन एयर आऊंगी अंदाज़े बयां में हम इंडी पॉप गाने ही प्ले करेंगे आपके लिए. बट फॉर नाउ इट इज अलीशा चिनॉय कमिंग अप विद मेड इन इंडिया.

7:16 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर एंड शंकर महादेवन की आवाज में आपने सुना झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक। हमारा शो हम तुम शुरू हो चुका है, जहां पर मैं प्ले करती हूं आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। आपको ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं जो उन मूवीज से हो जो कि साल 2000 के बाद रिलीज हुई मूवीज से हो, नॉट ओल्ड ट्रैक्स, यानी कि 90s, 80s, 70s, 60s, 50s के गाने नहीं प्ले होंगे, ओनली पोस्ट 2000s। और जो पहला रिक्वेस्ट है वो मैं प्ले करने वाली हूँ। इस गाने को गाया है शफकत अमानत अली ने विद सुनिधि चौहान, दिस इज फ्रॉम द मूवी आई हेट लव स्टोरीज। और इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम फिरोज सिगनपुरिया। और इसके बाद आप सुनेंगे एक ट्रैक फ्रॉम जाने मन, और उस गाने को गाया है सोनू निगम ने विद साधना सरगम, और इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अयान। तो ये दोनों गाने आप सुनने वाले हैं अभी बैक टू बैक। आफ्टर दैट मैं आऊंगी ऑन एयर, और किसका गाना प्ले होगा, कौन सा गाना होगा, ये सब जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

सिद्धार्थ महादेवन एंड सुकृति कक्कर की आवाज में आप सुन रहे थे दिल धड़कने दो से वाला गाना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम प्रणव शिंदे। एंड हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रैक पर जिसे गाया है शंकर महादेवन ने विद सौम्या राव लॉय मेंडोंसा। एंड इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम राकेश माथुर, दैट इज फ्रॉम द मूवी बंटी और बबली। और उसके बाद आप सुनेंगे अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में एक गाना। वो गाना कौन सा है और किसने रिक्वेस्ट किया है ये जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सात बजकर 48 मिनट हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर एंड हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है हम तुम। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में 1 2 4 से गाना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम विजेंद्र और इन्होंने अकोला से हमें मैसेज किया था। जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूँ, पंकज मोहड़ की रिक्वेस्ट है। उसके साथ साथ अंकित ने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो भी प्ले होगा, अजय सखारे ने जो मैसेज किया है गाने का वो भी प्ले होगा एंड प्रदीप अनंत कृष्णन की रिक्वेस्ट भी प्ले होगी, बिकॉज वक्त बड़ा कम रह गया है एंड मेरे यहां से जाने का वक्त हो गया है। सो ये गाने आप सुनेंगे अभी बैक टू बैक। फॉर नाउ मैं तो जा रही हूं यहां से स्टूडियो से, पर आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है।

0: सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said, the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
7: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है.

0: can a mountain exist?
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध

जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, रात की ये खामोश घड़ियां दिन भर की भागदौड़ के बाद मिलने वाला थोड़ा सा सुकून और संगीत का साथ, इससे बेहतर महफिल और क्या हो सकती है। आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो और कार्यक्रम है रंगी महफिल। मैं हूँ गीता और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सजाएंगे एक ऐसी महफिल जहाँ बातों में नज़ाकत होगी, एहसासों में गर्माहट होगी और गीतों के जो गीत सुनवाएंगे, जो गज़ल सुनवाएंगे, उसमें ज़िंदगी के कई रंग शामिल होंगे।

कहते हैं दोस्तों कि दिन का जो शोर होता है वो इंसान को दुनिया से जोड़ता है, लेकिन रात की खामोशी उसे खुद से मिलवाती है। और यही वो वक्त होता है जब कुछ अधूरे ख्वाब याद आते हैं, कुछ पुरानी बातें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं और कुछ नए ख्याल मन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो अगर आप भी इस वक्त अपने कमरे की खिड़की से आसमान की तरफ झांक रहे हैं, खुले आसमान को देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो सफ़र कर रहे होंगे, नाइट शिफ्ट में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और हमें सुन रहे होंगे, और कुछ बस नींद के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की ये महफिल आपके लिए

कैसा लगा रॉकी फिल्म से गाना, मैसेज करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818986810707070। जाग रहे हैं ना, तो मैसेज करके बताइएगा।

देव जुड़ गए हैं दिल्ली से, लिखते हैं बहुत याद आते हो। जब ताजे गुलाब देखता हूँ, जब काटता हूँ एक सुनहरी शाम तुम्हारे बगैर। वाह, बहुत ही गहरी बात कही है देव आपने, थैंक यू सो मच।

जिंदगी भी बहुत दिलचस्प होती है, कभी ये किसी रंगीन मेले जैसी लगती है तो कभी किसी शांत समुद्र की तरह किताब के उस पन्ने जैसी लगती है जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। और रात का ये वक्त हमें एक बात ज़रूर सिखाता है कि हर दिन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हर शाम अपने साथ उम्मीद का एक नया दिया लेकर आती है, एक नया चैप्टर शुरू होता है। और शायद इसी वजह से रातें सिर्फ अंधेरे का नाम नहीं है बल्कि नए सवेरे की तैयारी है। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल और मैं हूँ गीता। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से जुड़े हैं, लिखते हैं कि तन्हा रात है और दिल उदास है, वो मिलके बिछड़ गए, ये कैसी मुलाकात है, दिल धड़क रहा है मगर आवाज नहीं, वो धड़कन भी ले गए, कितनी अजीब बात है। फैंटास्टिक।

प्रकाश तिरसुनिया भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, लिखते हैं, हम सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर के टेरेस पर था, जब उसे अच्छी नींद आने लगी तो मैं नीचे आ गया, पर मैं आपके प्रोग्राम के साथ बना हुआ हूँ। थैंक यू सो मच।

आपको पता है कभी कभी सबसे जो खूबसूरत सबसे प्यारी बातें वो होती हैं जो कहीं नहीं जाती, किसी का खामोशी से हाल पूछ लेना, बिना वजह किसी की मदद कर देना, या फिर किसी की मुस्कान की वजह बन जाना। दुनिया में आज भी बहुत अच्छाइयाँ हैं दोस्तों, बस उसे देखने के लिए थोड़ी देर ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है। और शायद संगीत भी यही काम करता है, कुछ मिनटों के लिए हमारी परेशानियाँ, हमारी टेंशन, हमारे दिन भर की जो थकान होती है, जो स्ट्रेस होता है, वो दूर हो जाता है। और ये जो गाने हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना, बड़े जादूगर होते हैं। जैसे ही हम अपना मनपसंद गाना सुनते हैं ना, तो हमारी जो सारी दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। फिल्म बैजू बावरा से रफ़ी साहब की आवाज़, क्या फिल्म थी ये। 1952 में रिलीज़ हुई थी और देखते ही देखते पूरे देश में इसकी धूम मच गई थी उस दौर में। और उस दौर में जब फिल्मी संगीत में क्लासिकल संगीत को बहुत ही व्यावसायिक रूप से जोखिम माना जाता था, तब ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक दौर में संगीतकार नौशाद साहब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इतिहास रच दिया। बैजू बावरा न सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि इसके गीतों ने संगीत की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। और उन्हीं अमर गीतों में से एक ये था, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। शकील बदायूनी साहब के खूबसूरत अल्फाज, नौशाद साहब की राग भैरवी पर ये बेस्ड था मधुर धुन, और रफ़ी साहब और लता जी की जादुई आवाज़ इस गीत को सीधे दिल तक ले गई। आप सुन रहे प्रोग्राम रंगे महफिल, मैं हूँ गीता, यह है 102.6 FM। एक बहुत प्यारा गाना आपके लिए। जगजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गजल है ये।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़े हैं, लिखते हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और मधुर प्रस्तुति, मोहक बातें, मन भावन मन पसंद गीत, फिल्म रॉकी का गाना इनको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।

शुभाजीत कोलकाता से जुड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत इनफेक्ट इन्होंने लाइनें लिखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत गाना सुनवाने के लिए। 70-80 के दशक के गानों की बात ही कुछ और थी, उन गानों की एक अलग ही खुशबू थी जो आज भी दिल और जिंदगी के लिए दवा का काम करती है। और रेडियो पर जब बजते हैं 70-80 के वो सुरीले तराने, लगता है जैसे लौट आए हों फिर से बीते हुए जमाने। कहीं प्रेम की मीठी सरगम, कहीं विरह की गहरी बात, हर धुन में छिपी होती है यादों की एक सौगात। बहुत ही खूबसूरत, और आपने इतनी अच्छी हिंदी में ये मैसेज लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

केपी तोमर साहब मेरठ से जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ आपके साथ। संगीत समस्त ललित कलाओं में सर्वोपरि है। इससे निकलती ध्वनि तरंगे रुग्णावस्था में औषधि का कार्य करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या विचार है इस विषय पर? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया जनाब आपने। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि संगीत वो साधना है जो स्वर के माध्यम से भावों को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, आई थिंक। और इसमें न रंगों की सीमा हो

होती है, ना शब्दों का कोई बंधन, सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियों का अनंत विस्तार। शायद जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है, और शायद इसी कारण संगीत को सभी कलाओं का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना गया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?

रात गहराती जा रही है लेकिन हमारी महफिल अभी जारी है। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने और कुछ नया महसूस करने का अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल की थकान को आप पीछे छोड़ दीजिए और आने वाले कल की उम्मीदों को दिल में जगह दीजिए। मैं हूं गीता दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और ये है जो प्रोग्राम चल रहा है वो है रंगे महफिल। फिलहाल सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गाना, रात के इस आलम को और भी खूबसूरत बना देगा।

आई होप ये प्रोग्राम की प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही होगी. इफ यस, प्लीज डू राइट इन टू feedback@gmail.com राइट नाउ, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, आपका जो रिएक्शन है, आपका जो प्यार है हमारे प्रोग्राम की हौसला अफजाई करता है. तो प्लीज मेल करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर।

0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेल, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 11:55। स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल इजाजत नहीं देगी कि और बात करूंगी। थर्सडे आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स। लेकिन ये महफिलें दोस्तों यूं ही सजती रहेंगी, गीत भी यूं ही बजते रहेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे भी इनफैक्ट याद रखनी चाहिए, जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम जो कुछ भी हैं आज, उस ऊपर वाले की दुआ से आज जो भी हमारे पास है उसे हम कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ संगीत का जो ये सफ़र है इसको यहीं विराम देते हैं, फिर मिलूंगी। आप सभी खुश रहिए, सभी का बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू, आपने टाइम निकाल कर मैसेज किया और प्रोग्राम को पसंद किया। बट हाँ, मेल करना नहीं भूलिएगा, प्रोग्राम के लिए रिएक्शंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलती हूँ, गुड नाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक 17,800 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,57,000 से ज्यादा लोगों को संतुलित खाद के इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत के प्रबंधन और

खेती के वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य लंबे समय में मिट्टी की उत्पादकता को बेहतर बनाना और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 और 45 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ, और ये गीत हमने लिया है फिल्म कलाकार से जो कि रिलीज हुई थी 1983 में। हालांकि फिल्म ज़्यादा तो नहीं चली थी लेकिन इसका ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ था। तो किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: दोस्तों, अब आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया नैना फिल्म का ये गीत। और ये जो गीत हमने लिया है फिल्म नैना से, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे शशि कपूर और राजश्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: स्वामी फिल्म में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: बारह बजकर 29 मिनट हुए हैं और दोस्तों आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ।

लता मंगेशकर के गाइस खूबसूरत से गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जमाने को दिखाना है से।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आइए अब सुनते हैं फिल्म जीवा का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जीरो आर शो में आइए अब आपको सुनवाते हैं एक जान है हम फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

और दोस्तों ये गीत हमने लिया है लव इन गोवा से, अल्फ्रेड रोज की आवाज में, थोड़ा हटके है, जरा मजा लीजिए।

sing it. Smile, there is love in Goa. Yeah, come on. Oh,

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में बस मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म खानदान से है और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। भारत के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और सी फूड के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित 2 दिवसीय सी फूड निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला कल विशाखापत्तनम में हुई। ये कार्यशाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और के राम मोहन नायडू के साथ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का ये अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: एक बजकर 5 मिनट और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक में सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित

0: प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता के लिए गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल हाइड्रोजन रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली के शकुर बस्ती डिपो में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज शकुर बस्ती रेल सेक्शन के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इलाके में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। शकुर बस्ती डिपो में श्री वैष्णव ने अत्याधुनिक रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, बोगी पिट और बोगी लिफ्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज़्यादा किसान बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 47 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आय हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और स्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल देर शाम रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 10:04 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे

0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों

0: में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुवांग कीमा ने इस महीने के 18 तारीख को होने वाले राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भाजपा राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 4 विधायकों का न्यूनतम समर्थन नहीं है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने के 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी।
1: दिस इज आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।